बहुत सही ये पंक्तियाँ थी। और दोस्तों, वाकई में ही इंसान अपने व्यवहार के कारण ही तो पहचाना जाता है। और अब अगला गीत मीना बाजार फिल्म से कुमार सानू का गाया हुआ, समीर की रचना है और कुमार नरेश शर्मा का संगीत।

सच में दोस्तों, कुछ भी नहीं तो है जिंदगी, सुख दुख की ही कहानी है। और हम अगर किसी को अपनी मुस्कुराहट दे सकें तो जिंदगी में ज़रूर देनी चाहिए।

दोस्तों, बहुत से गीत हमें संदेश देकर जाते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में कोई ना कोई ध्येय जरूर बनाकर रखना चाहिए। अनाड़ी फिल्म से मुकेश की आवाज में आपने ये गीत सुना जो यही कहता है कि हमें अपने लबों पर मुस्कुराहट बनाकर रखनी चाहिए। जिंदगी में उतार चढ़ाव, दुख सुख आते जाते रहते हैं। शैलेंद्र की इस गीत के लिए रचना थी और शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं जमीर फिल्म से गीत महेंद्र कपूर का गाया हुआ। सपन चक्रवर्ती की रचना है और सपन जगमोहन का संगीत।

0: फिल्म जमीर से आपने रचना सुनी महेंद्र कपूर की आवाज में, और इस रचना के साथ ही आज का भोर सुहानी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अपनी दोस्त वंदना चौक को दीजिए इजाजत इस कार्यक्रम को संपन्न करने की। नमस्कार। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और अब सुनते
1: आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल से बोल रहे हैं 102.6
2: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం. ఇప్పుడు వందనం వింటారు, సారీ క్షమించాలి, వందే మాత్రం వింటారు.

में दूसरे भारत EFTA समृद्धि शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन की यात्रा के 25 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कल सेवा तीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन GSMA के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। सरकार ने बहुआयामी योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत परिवहन और रसद प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी। लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई। विश्व बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान 6.6% से बढ़ाकर 7.1% किया। सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी ग्रामीण के अंतर्गत किए जाने वाले कामों की सूची जारी की। कामों की संख्या में करीब 41% की बढ़ोतरी। राजस्व खुफिया निदेशालय की भारत बांग्लादेश सीमा पर तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। करीब 12 करोड़ की कीमत का लगभग 8 किलो 300 ग्राम विदेशी सोना जब्त। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हॉलजोन को खगोल भौतिकी मूल के उच्च ऊर्जा न्यूट्रिनो की खोज के लिए 2026 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान जताया। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में तेज हवाएं चलने की संभावना। नोवाक जोकोविच ने बीजिंग में एलेक्स डीमिनोर के चोट के कारण फाइनल से हटने के बाद 7वीं बार चाइना ओपन का खिताब जीता। यह जोकोविच के करियर का 102वां टूर स्तर का खिताब है। और भारत ने 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार समाप्त हुए।

दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे विपक्ष की ओर से मार्च का कोई अनुरोध नहीं मिला था, इसलिए मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई। पुलिस ने बताया कि इसके चलते नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई। पुलिस ने कानून के तहत करीब 260 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें 10 सांसद भी शामिल हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अपने समर्थकों के साथ बिना अनुमति आकाशवाणी भवन परिसर में पहुंचे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कांग्रेस नेताओं और अन्य प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया और हिरासत में लिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी राजबीर घुम्मन और उनके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित पैसे के लेन देन और भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कामों की सूची जारी की है। नई सूची में कुल 375 तरह के काम शामिल हैं। इन्हें 4 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। सरकार के अनुसार इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के साथ साथ लंबे समय तक काम आने वाला ग्रामीण बुनियादी ढांचा तैयार करना, पानी की सुरक्षा बढ़ाना और आजीविका के अवसर मजबूत करना है। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले टी20 मैच में 8

0: जागते रहो जागते रहो।
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो।
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है।
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत
1: जागरूक भारत
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: हर सोमवार सुबह 11 बजे सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत
1: जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।

0: 101.9 and friends on FM Rainbow 101.9 you are listening to Beautiful the German pop icon Beautiful by German pop icon Sarah Connor and this song serves as a soaring emotional tribute to the wonder of childbirth and the innocence of a newborn child. Yes folks, and unlike many pop tracks of the early 2000s that focus on romantic heartbreak, Beautiful is entirely dedicated to a newborn baby. The lyrics specifically paint a picture of a child's first milestone. A smile that changes everything. The first step that makes you think. And explicitly call the birth of an infant a literal miracle that is bigger than the universe. Isn't it?
1: FM Rainbow 101.9.
2: जागते रहो जागते रहो,
3: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
2: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
3: अफवाहों से
2: धोखाधड़ी से
3: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
2: अपने जिम्मेदारियों के प्रति
3: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
2: सजग भारत,
3: जागरूक भारत,
2: सशक्त भारत।
3: सुनिए सजग भारत
2: हर सोमवार सुबह 11 बजे सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
3: जागरूक बनिए
2: सजग रहिए।

0: FM Rainbow 101.9।
1: वेलकम बैक दोस्तों, पुनः आपका दिल की गहराइयों से स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम अपबीट आर में, जहां मैं आपकी धड़कनों पर जीती आरजे प्रीति आज इस सेगमेंट में। जैसे आपको पता ही है कि बदलाव प्रकृति का नियम है, और 1 अक्टूबर से आपने हमारे शोज में भी बदलाव देखा होगा, है ना। तो इसी बदलाव को आगे बढ़ाते हैं, बस इसीलिए ये बदलाव लाया है ताकि आपको बोरिंग ना लगे और आप भी कुछ अपबीट म्यूजिक को एंजॉय करें। इसीलिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं ज्ञानचंद जी के ज्ञान की ओर। एक बार ना ज्ञानचंद जी को किसी ने बोला कि भाई ज्ञानचंद जी, मैं तो बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। तो ज्ञानचंद जी ने पूछा क्या, तो बोले कि मेरी पत्नी ने मुझे ये फरमाइश की है कि मेरे बर्थडे पर मुझे ऐसा मतलब ऐसे करे दो जिन्हें देखने पूरा मोहल्ला पीछे पीछे चले। तो इस पर ज्ञानचंद जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप उसे कफन भेज दो। भाई तौबा तौबा, ऐसे ऐसे ज्ञानचंद जी ना, ऐसे ज्ञान तो बस किसी विरले को ही देते हैं, और मैं तो बोलूंगी कि ना ही दे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसे ज्ञान वो अपने पास ही रखें, वरना अब जिनको उन्होंने ज्ञान दिया है उनके घर में क्या हुआ होगा ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, है ना। क्योंकि जोड़ों का दर्द तो जोड़े ही जानते हैं। तो चलिए भाई, हम तो बस आपसे गल्ला करना जानते हैं, तो उसी और बढ़ते हैं। स्टे ट्यून्ड।

0: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026లో భాగంగా డ్రాఫ్ట్స్ ఓటర్ల జాబితాలో మీ పేరు ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఒకవేళ జాబితాలో మీ పేరు లేకపోతే కొత్తగా ఓటరు నమోదు చేసిన దానికి ఫామ్ 6 తో పాటు డిక్లరేషన్ ఫామ్, అభ్యంతరాలకు ఫామ్ 7, సవరణలకు ఫామ్ 8 ద్వారా ఆగస్టు 17 నుంచి అక్టోబర్ 7 లోపు ఆన్లైన్ లో voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ ద్వారా లేదా ఆఫ్లైన్ లో ఏఆర్ఓ, ఏఈఆర్ఓ లేదా బిఎల్ఓకు మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. వివరాలకు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1950కు కాల్ చేయండి. చేవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి తెలంగాణ.
1: FM Rainbow 101.9
2: और साथियों आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं अब बीट आर आपकी धड़कन बची थी आरजी प्रीति के साथ. और पी का भी यानी कि प्रीति के पिटाई में आज बहुत कुछ है. शुरुआत करते हैं आज की तारीख से. तो साथियों आज की तारीख यानी कि 7 अक्टूबर ना अपने आप में खास है, क्योंकि इसी दिन 3 ऐसे लोगों का जन्म हुआ जिन्होंने देश के लिए अलग अलग मोर्चों पर योगदान दिया. सबसे पहले आता है नरहरि द्वारकादास पारिख, जिनका जन्म 7 अक्टूबर 1891 को हुआ, यानी कि 7th अक्टूबर 1891 को. वे खेड़ा और बारडोली के किसान आंदोलन में सक्रिय रहे, धरसाना सत्याग्रह में गिरफ्तार हुए और 1942 यानी कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जेल भी गए. और फिर आती है बारी दुर्गावती देवी यानी कि दुर्गा भाभी की, जिनका जन्म 7 अक्टूबर 1907 को यानी कि 7th अक्टूबर 1907 को हुआ. वे क्रांतिकारी आंदोलन की सक्रिय सदस्य थी और भगत सिंह जी को लाहौर से सुरक्षित निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों में भी हिस्सा लिया था. और तीसरा नाम आता है बालीराम भगत का, जिनका जन्म 7 अक्टूबर सन 1922 यानी कि 7th अक्टूबर 1922 को हुआ. युवावस्था में ही स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े और सन 1942 यानी कि 1942 में कॉलेज छोड़कर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए. वे लंबे समय तक भूमिगत रहे और आजादी के बाद यानी कि स्वतंत्रता के बाद संसदीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका भी उन्होंने निभाई. तो देखिए सन 1891, 1907 और 1922 यानी कि 1891, 1907 और 1922 तीन अलग अलग पीढ़ियां, तीन अलग रास्ते, लेकिन देश के लिए समर्पण की भावना एक. 7 अक्टूबर को इन तीनों स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना हमारे इतिहास के उन अध्यायों को याद करना है जिनकी कीमत बहुत बड़ी थी, आजादी. सो हैट्स ऑफ टू देम. आज वो जहां कहीं भी है यही हमसे कह रहे होंगे.

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति,
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से,
0: सजग भारत
1: जागरूक भारत
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: हर सोमवार सुबह 11 बजे सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।

0: FM Rainbow 101.9 Musically Yours.
1: और साथियों म्यूजिकली योर्स के इसी सफर में आप सुन रहे हैं अप बीट सॉन्ग्स या अप बीट आर. और दिन विशेष की यदि मैं बात करूं तो साथियों कुछ लोग ना मुश्किल आते ही रास्ता बदल लेते हैं, परंतु कुछ ऐसे होते हैं जिनके सामने मुश्किलें भी आकर छोटी पड़ जाती हैं. और ऐसे ही थे हमारे 10वें सिख गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी साहब. आज 7 अक्टूबर है और गुरु गोविंद सिंह जी ने की आज उनका ज्योति दिवस है. सन 1966 यानी कि 1966 में पटना साहिब में जन्मे गुरु साहिब ने अपना पूरा जीवन साहस, न्याय और सिद्धांतों के लिए समर्पित किया. और सन 1699 यानी कि 1699 की बैसाखी पर आनंदपुर साहिब में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी. उन्होंने लोगों को सिखाया कि अन्याय के सामने झुकना नहीं और सच के रास्ते पर चलते हुए कभी डरना नहीं. लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन केवल वीरता की कहानी नहीं साथियों, त्याग की भी उत्कृष्ट मिसाल है. उनके चारों साहिबजादे अजीत सिंह जी, जुझार सिंह जी, जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी शहीद हो गए. सोचिए एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख क्या ही होगा. परंतु गुरु गोविंद सिंह जी का हौसला नहीं टूटा और 7 अक्टूबर सन 1708 यानी कि 7th अक्टूबर 1708 को नांदेड़ में देह त्यागने से पहले उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का शाश्वत गुरु घोषित किया. तो आज उन्हें याद करते हुए बस एक बात, गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें केवल तलवार उठाना नहीं सिखाया, उन्होंने सिखाया कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, सही बात के लिए खड़े रहने का हौसला कभी नहीं छोड़ना चाहिए. क्योंकि इंसान की असली ताकत इसमें नहीं कि उसके पास क्या है, बल्कि सब कुछ छिन जाने के बाद भी वे अपने सिद्धांतों पर कितना कायम रहता है उसमें है ना. इसीलिए अपना कर्म करते चलो. आज उनके ज्योति ज्योत दिवस पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी को शत शत नमन.

0: సెబీ వారి ఇన్వెస్టర్ అవగాహన కార్యక్రమం. మరింత సమాచారం కోసం సెబీ ఇన్వెస్టర్ వెబ్సైట్ ను సందర్శించండి లేదా సెబీ సారథి యాప్ ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
1: और साथियों आकाशवाणी की उसी एफएम रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं आप बीट आर. और दिन विशेष की बात करूं तो साथियों प्यार में धोखा मिले तो लोग रोते हैं, परंतु बेगम अख्तर होती ना तो उसी दर्द की ऐसी गजल बना देती कि धोखा देने वाला भी सुनकर रो पड़े. और यही कमाल था बेगम अख्तर की आवाज का, दर्द को भी सुर दे देना. 7 अक्टूबर 1914 यानी कि 7 अक्टूबर 1914 को फैजाबाद में जन्मी बेगम अख्तर ने मात्र 7 वर्ष की उम्र में मंच पर गाना शुरू कर दिया था. आगे चलकर उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की तालीम ली और गजल, ठुमरी और दादरा को अपनी खास गायकी से अलग पहचान दी. उनकी आवाज में एक ऐसा ठहराव और एक ऐसा एहसास था कि गजल सिर्फ सुनी नहीं जाती थी, सीधे दिल पर लगती थी. इसी वजह से उन्हें मल्लिकाए गजल के नाम से भी जाना गया. उनके हुनर को देश ने भी सम्मान दिया. सन 1968 यानी कि 1968 में पद्मश्री और सन 1972 यानी कि 1972 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और उनके निधन के बाद सन 1975 यानी कि 1975 में पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया गया. तो बेगम अख्तर को याद करते हुए बस इतना ही कि कुछ लोग दर्द से टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी दर्द को ऐसा सुर दे जाते हैं कि पीढ़ियां उन्हें सुनती रहती हैं. उनकी आवाज में एक खास बात थी, एक विशेष बात थी, वो ठहराव और वो एहसास. उनकी गजल सुनते हुए लगता था जैसे गायक सामने बैठकर गा नहीं रहा है बल्कि अपनी ही कोई अनकही बात कह रहा है. चलिए, हम समयाभाव के कारण शायद वो गजल आपको नहीं सुना पाएंगे, पर फिर भी पूरी कोशिश करेंगे. उससे पहले कुछ अहम जानकारी आप तक, स्टे ट्यून्ड.
2: Hello listeners, are you someone who loves getting lost in the pages of a good book and wishes others could experience the same joy that you found between those pages? Have you ever found yourself recommending a book to your friends just because you simply felt that this is a must read? What if we told you that you could now share that experience not just with one person but with thousands of listeners? If the thought of your voice bringing a story to life excites you, then this one is for you. FM Rainbow is thrilled to present Read with Rainbow, a brand new initiative that celebrates the joy of reading through the voices of young readers. If you're between 15 to 25 years of age and have a passion to share a good read with listeners across the airwaves, then share us your name and mobile number to our mailing address readwithrainbow2026@gmail.com. So dear listeners, what are you waiting for? Don't just read a great book, be the voice that shares it. Read with Rainbow, where every page finds a voice and every voice inspires a reader.
1: FM Rainbow 101.9. और साथियों आकाशवाणी की उसी एफएम रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे थे अब बीट आर. और अब समय हो चला है एक भारत श्रेष्ठ भारत का. जी हाँ साथियों, जहाँ पर इस सप्ताह हम राजस्थान, जी हाँ राजस्थान के बारे में आपके साथ जानकारी साझा कर रहे हैं. तो आपने सप्ताह के शुरुआत में राजस्थान के टूरिज्म और डेस्टिनेशन के बारे में सुना, कल आपने वहाँ के फेमस जो है फूड कल्चर, कुलिनरी आर्ट ट्रेडिशंस के बारे में सुना. यस, दाल बाटी चूरमा आपने बहुत एंजॉय किया ना. अब आज हम उसके कल्चर और फेस्टिवल्स की ओर बढ़ेंगे. जी हाँ, राजस्थान के बारे में आपके साथ जानकारी साझा करेंगे, स्टे ट्यून्ड. पर वहाँ पर जाने से पहले एक विशेष जानकारी आप सभी के लिए.
3: ईरानी चाय,
2: बन मस्का,
3: హైదరాబాదీ బిర్యానీ,
2: టంగ్ ది కబాబ్,
3: కుర్బానీ కా మీఠా,
2: షహదూద్ మలాయ్.
3: హైదరాబాద్ ఇస్ అ గ్రాండ్ బఫే
2: అండ్ ఎవ్రీ డిష్ హ్యాస్ అ స్టోరీ వెయిటింగ్ టు బి టోల్డ్.
3: ఎగ్జాక్ట్లీ, దట్స్ వై జష్నే హైదరాబాద్ ఇస్ యువర్ ఆఫ్టర్నూన్ ట్రీట్
2: ఫ్రమ్ 2 to 3 PM ఎవ్రీ డే ఆన్ ఎఫ్ఎం రెయిన్బో 101.9.
3: ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఫుడ్,
2: ఇట్స్ కల్చర్, హిస్టరీ అండ్ ఫ్లేవర్ రోల్డ్ ఇన్ టు వన్.
3: జష్నే హైదరాబాద్.

साथी हूँ। बिल्कुल सही अंदाजा लगा रहे हैं आप। मैं बात आज आपके साथ साझा करना चाहती हूँ रंगीला राजस्थान और बठारी संस्कृति भी। खम्मा घणी सा खम्मा घणी, कुछ समझ आया? जी हाँ, जैसे हम यहाँ पर नमस्कार नमस्ते हेलो कहते हैं, वैसे वहाँ पर ठेठ राजस्थान में किसी का भी यदि हम अभिवादन करते हैं तो उसे खम्मा घणी कहते हैं। साथियों, रंगीलो राजस्थान इसलिए क्योंकि वहां यदि कोई कह दे कि थोड़ा रंग कम करो तो शायद राजस्थानी संस्कृति ही आपसे पूछ बैठे कि क्यों सा, कोई नाराज है के? जी हाँ, क्योंकि यहां संस्कृति केवल देखी नहीं जाती, पहनी जाती है, बोली जाती है, निभाई जाती है और पीढ़ियों से संजोई जाती है। महिलाओं का घाघरा, घाघरा सुनते ही याद आया, ढोला ढोल मजीरा बाजे रे, काली छींट को घाघरो निजारा मारे रे, है ना? या फिर इन लहरिया, वो भी एक है ना, आपको बताएं, इन लहरिया 900 रुपया रोकड़ा सा, मान लिया दो नी बादीला ढोला लहरियो सा। मतलब हर हर एक बात को वहां पर गीत से एक्सप्रेस किया जाता है। ओढ़नी बांधनी और लहरिया के चटक रंग, कांच की चूड़ियां और पारंपरिक आभूषण और पुरुषों की पगड़ी, साफा अंगरखा और धोती राजस्थान की पहचान को रंग और शान देते हैं, जिसमें हर व्यक्ति फूटरा लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फूटरा क्या है? जी हाँ साथियों, राजस्थान में सुंदर को फूटरा कहते हैं और यहाँ पगड़ी भी कमाल की चीज है। सिर पर बंदी है लेकिन पहचान पूरे इंसान की बयां कर देती है। रंग, बांधने का ढंग और अवसर, सब में परंपरा की अपनी कहानी है। और फिर आती है बोली, बोली की मिठास। भाई मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हड़ौती, मेवाती और वागड़ी और ब्रिज बोलियां अलग अलग लेकिन अपनापन एक। और एक वाक्य तो राजस्थान की पहचान बन चुका है, पधारो म्हारे देश। जी हाँ, आपको सोमवार को निशा जी ने सुनाया था ना, पधारो म्हारे देश। जी हाँ, ये केवल स्वागत के शब्द नहीं, राजस्थानी लोकाचार की भावना है। बड़ों का सम्मान, रिश्तों की गर्माहट, सामुदायिक जीवन और मेहमान के प्रति मान मनुहार, यहाँ अपनापन बोलने से पहले ना महसूस किया जाता है, अनुभव किया जाता है। और हुनर की बात करें तो भाई हमारे कारीगरों की उंगलियां भी कमाल की कहानीकार हैं। बांधनी, लहरिया, ब्लॉक प्रिंटिंग, लाख का काम या फिर नीली पॉटरी, कढ़ाई, चमड़े और लकड़ी का शिल्प, साधारण चीजों में भी सौंदर्य भर देना ही यहाँ की परंपरा है। जी हाँ, तो सा राजस्थान के सिर्फ रंगीन कहना कम होगा, यहाँ रंगीन कपड़ों में है मिठास, बोलियों में है मिठास और हुनर हाथों में है और अपनापन व्यवहार में। यानी राजस्थान कोई ऐसी संस्कृति नहीं जिसे सिर्फ केवल किताबों में पढ़ लिया जाए, इसे जीना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है और तभी दिल से आवाज निकलती है, पिच रंग पागारी धरती रो। जी हाँ साथियों, और कोशिश करेंगे कि हम आपको यही प्यारा सा गीत सुनाएं। स्टे ट्यून्ड। कोशिश तो करते हैं, लेट्स सी कहाँ तक हमारी कोशिश सार्थक होती है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ठेठ जो है दक्षिण में आकर हम आपके साथ राजस्थानी की बात जो कह रहे हैं, या फिर चलिए कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, लेट्स डू इट।

0: FM Rainbow 101.9 Musically yours.
1: साथियों आकाशवाणी के उसी FM रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। कालो कूद पढ़ो मेला में के साइकिल पिंचर कर लायो। यस, राजस्थान का लोक संगीत इसकी मिट्टी की आवाज है। राजस्थान की संस्कृति की सबसे खूबसूरत बात यही है, यहाँ कहानी सिर्फ कहीं नहीं जाती, कभी सुर बनकर गूंजती है तो कभी कदमों में उतरती है और कभी कठपुतली के धागों पर थिरकती है। मांड गायकी, लोकगीतों की परंपरा और लांगा मांगनियार जैसी पारंपरिक कलाकारों की गायकी में प्रेम, भक्ति, वीरता और लोक जीवन की अनेक कहानियां सुनाई देती हैं। और फिर जब यही सुर कदमों में मिल जाए तो जन्म होता है लोक नृत्य घूमर का। जी हाँ साथियों, घूमर याद आया।

आशा, यस यस यस, मैं घूमता घूमर में घूमता घाघरा जैसे रंगों का चक्र बना देता है, काल बेलिया में लय और देह भंगिमा की अद्भुत संगीत अद्भुत जो है संगति दिखाई देती हैं, और गेर चंग और तेरह ताली जैसी लोक प्रस्तुतियां राजस्थान की विविध लोक परंपराओं को सामने लाती हैं। अब जरा मंच छोटा कर दीजिए क्योंकि राजस्थान की कठपुतली आ गई है। धागे खींचे, लकड़ी की पुतलियां हिली और देखिए कहानी जीवंत। यही तो कमाल है राजस्थान की लोक कला का। साधन छोटा हो सकता है परंतु कहानी कभी छोटी नहीं होती। और राजस्थान के कारीगर भाई, हमारे हाथों में हुनर और हुनर में पीढ़ियों

याद, कपड़े की छपाई और कढ़ाई से लेकर लाख, मिट्टी, लकड़ी, धातु, चमड़ा और नीली पॉटरी तक हर शिल्प में स्थानीय परंपरा की अपनी छाप दिखाई देती है। और जब यही कला पत्थरों पर उतरती है तो किले, महल, हवेलियां, मंदिर और बावड़ियां राजस्थान की वास्तुकला की कहानी कहने लगती हैं। तो सा राजस्थान की संस्कृति को समझना हो तो सिर्फ आंखें मत खोलिए, कान भी खोलिए, दिल भी खोलिए, क्योंकि यहाँ सुर में इतिहास है, नृत्य में परंपरा है, शिल्प में हुनर है और पत्थरों में सदियों की कहानी। यही तो है राजस्थान। और जब राजस्थान की बात करें और घूमर ना हो तो मजा आएगा नहीं ना, तो चलिए उसी ओर बढ़ते हैं।

यस यस यस, बिल्कुल सही अंदाजा लगाना। मैं बात कर रही हूँ राजस्थान के पारंपरिक त्योहार गणगौर की। उसके साथ आपके साथ बहुत सारी जानकारियां साझा करूंगी, पर फिलहाल एक विशेष जानकारी आप सभी के लिए।

0: సెబీ వారి ఇన్వెస్టర్ అవగాహన కార్యక్రమం. మరింత సమాచారం కోసం సెబీ ఇన్వెస్టర్ వెబ్సైట్ ను సందర్శించండి లేదా సెబీ సారథి యాప్ ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
1: तो बात गणगौर की. जी हाँ, राजस्थान के पारंपरिक त्योहार गणगौर की चल रही है, क्योंकि हमारे राजस्थान में त्योहार सिर्फ मनाया नहीं जाता, पूरा माहौल ही त्योहार बन जाता है. गणगौर से गण यानी शिव और गौर यानी कि पार्वती. चैत्र में मनाया जाने वाला यह पर्व खासकर विशेषतः जो है महिलाओं के लिए आस्था सुहाग और मंगल कामना से जुड़ा है. पूजा, गीत, मेहंदी, साज सज्जा और शोभा यात्राएं राजस्थान की गलियों को जैसे ना जीवंत कर देती हैं. फिर सावन आते ही तीज, झूले, मेहंदी, लहरिया और गीतों के साथ दस्तक देती हैं ये तीज का त्यौहार. जयपुर में तीज माता की सजी धजी शोभा यात्रा इस त्यौहार की विशेष पहचान है. और होली अभी आपने सुना ना. यस, राजस्थान में ब्रज की होली का रंग केवल चेहरे पर नहीं लोकगीत और भक्ति में भी चढ़ता है.

नैनांदोली, जी हाँ, ऐसे काफी सारे गीत वहां पर जो है विख्यात हैं। राजस्थान पर्यटन के अनुसार ब्रज होली फाल्गुन में होली से पहले मनाई जाती है और फिर आता है दशहरा। बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश और कई जगहों पर बड़े जनसमूह और रामलीला की परंपरा। और दीपावली, दियों का त्योहार है तो दियों की कतार, घरों की सजावट, लक्ष्मी गणेश पूजन और रोशनी से जगमगाता राजस्थान। मानो रात ना खुद को राजस्थानी पोशाक पहना ली हो। फिर मकर संक्रांति, आसमान में पतंगे और नीचे छतों पर उत्साह और घेवर फीनी की मिठास, तो राजस्थान

राजस्थान के त्यौहार में भक्ति भी है, श्रृंगार भी है, लोकगीत भी है, रंग भी और सामूहिक उल्लास भी। यानी त्योहारों की असली खूबसूरती यही है कि एक घर से शुरू होता है और देखते देखते पूरे शहर का हिस्सा बन जाता है। और राजस्थान में ना सावन में चिरमी, पता है आपको चिरमी क्या है? गुंजा रत्ती, जो मतलब काफी सुनारों के पास होती है, छोटी सी वो लाल सी, यस गुंजा चिरमी, वो खेलने का भी एक अलग ही मजा होता है। भाई मजा क्या, देखिए राजस्थान में हर चीज पर एक लोकगीत होता है, चिरमी रा दाना चार वारी जाओ चिरमी ने, है ना, चढ़ती नदी खे मेड़ता उतरती नदी खे अजमेर वारी जाऊं चिरमी रे, ऐसे बहुत सारे गीत हैं। खैर जब हम बात राजस्थान की कर रहे हैं और हमारी गाड़ी राजस्थान की ओर ही चल रही है, तो इंजन की सीटी क्या कहती है वो भी सुन ले।

ये प्यारे प्यारे गीत सुनकर आपका भी मन डोलने लगा ना भाई। ऐसी ही तो है राजस्थानी परंपरा। सर, राजस्थान को यदि सिर्फ उसके बड़े त्योहार से पहचान लिया तो समझिए आपने किताब का केवल पहला पन्ना पढ़ा है। असली रंग तो तब खुलता है जब राजस्थान का हर आंचल अपना अपना उत्सव लेकर सामने आता है। कहीं गोगा जी की लोक आस्था है तो कहीं बाबा रामदेव जी के प्रति श्रद्धा। पिछम धरा सुमारा पीव जी पधारिया, हर जी भाटी चावर ढुले, लाछा बाई सुगना बाई करे हर की आरती। ऐसे रामदेव बाबा जी को वहां पर बिठाया जाता है। और कहीं मीराबाई की कृष्ण भक्ति, मेड़ता की मीरा महोत्सव ना संत मीराबाई के जीवन की भक्ति को समर्पित है। भक्ति, नृत्य, गीत और शोभा यात्रा इसके प्रमुख अंग हैं।

0: है। अब जरा पश्चिम की ओर चलिए, जोधपुर का मारवाड़ उत्सव, राजस्थान के वीरों की स्मृति, मारवाड़ के संगीत, नृत्य और शौर्य प्रणय की लोक गाथाओं को सामने लाता है। कभी इसे मांड उत्सव कहा जाता था। उदयपुर का मेवाड़ उत्सव वसंत के स्वागत और गणगौर से जुड़ी परंपराओं का रंग लेकर आता है। और जैसलमेर का डेजर्ट फेस्टिवल, भाई साहब वहां तो धार की रेत भी कहती होगी आज मेरी बारी है चमकने की। जी हाँ, लोक नृत्य, लोक संगीत, कठपुतली, ऊंटों से जुड़ी प्रस्तुतियां और रेगिस्तानी संस्कृति 3 दिन तक रेत जैसे रंग मंच बन जाती है। और हाँ, पुष्कर मेला, इसे त्योहार नहीं राजस्थान के प्रसिद्ध पशु एवं सांस्कृतिक मेलों में गिनिए साहब। ऊंट पशुधन व्यापार के साथ पारंपरिक प्रतियोगिताओं और लोक जीवन जो है इसकी पहचान है। यानी राजस्थान में उत्सव केवल कैलेंडर की तारीख नहीं, कहीं वह भक्ति, कहीं वीर गाथा, कहीं लोक स्मृति और कहीं रेगिस्तान पर सजा हुआ रंगीन रंगमंच है। और भाई इसके बारे में जैसे मैं आपको कहा ना, कितरो करा जी बखान, कितना कहें इसके बारे में उतना कम है, पर फिर भी समयाभाव के कारण हम यहाँ से और ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो चलिए, अब समय हो चला है, जी हाँ, समाचारों का, न्यूज का। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं उसी और न्यूज के बाद, पहले हम हिंदी में समाचार सुनेंगे, उसके बाद में इंग्लिश में न्यूज सुनेंगे, और उसके बाद हम ठीक 12:10 पर आपके साथ शामिल होंगे यादों की बारात में। तो एंजॉय कीजिएगा आपका अपना शो यादों की बारात, परंतु समाचारों के बाद।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में आज 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर जाकर देश और 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि 25 वर्ष में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
2: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
1: इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जनसेवा को अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बनाया है और राजनीति को राष्ट्र सेवा का माध्यम माना है। श्री नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं को केंद्र में रखकर कई योजनाएं बनाई और उन्हें लागू किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट पे कहा है कि श्री मोदी ने समावेशी विकास की सोच को देशव्यापी अभियान में बदल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जन केंद्रित नीतियों के कार्यान्वयन, निर्णय लेने में दृढ़ता, पारदर्शिता और परिणामों की गारंटी के माध्यम से शासन की परिभाषा को ही बदल दिया है, साथ ही प्रदर्शन की राजनीति के आदर्श की स्थापना की है। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर उनकी सराहना की है। एक हिंदी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री तोबगे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की विदेश नीति में पड़ोसी देशों को विशेष महत्व दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी का निर्माण न केवल वर्तमान के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी किया जा रहा है। घाना के विदेश सेवा संस्थान में श्री जयशंकर ने कहा कि कूटनीति और प्रतिस्पर्धा को टकराव में बदले बिना उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए और आपसी हितों में मतभेदों के बावजूद भी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। भारत ने जम्मू कश्मीर पर और पाकिस्तान

0: पाकिस्तान में आतंकी ढांचों के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी की टिप्पणियों को खारिज किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की छठी समिति में लोकसभा सांसद बिप्लव कुमार देव ने कहा कि टिप्पणी करने वाले पीड़ित और अपराधी के बीच अंतर नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी ओएसडी राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। इस सिलसिले में चंडीगढ़, मोहाली, गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर और जलंधर में 8 ठिकानों पर छापे मारे गए। इस दौरान लैपटॉप, मोबाइल फोन और दस्तावेज सहित कई महत्वपूर्ण सामग्री जब्त की गई है। इनकी जांच की जा रही है। ये कार्रवाई पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कल के आदेश के बाद हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंक की बढ़ोतरी की है। अब रेपो दर 5.25% से बढ़कर 5.5% हो गई है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की दर 5.25% तय की गई है। वहीं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक दर को भी बढ़ाकर 5.75% कर दिया गया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज 0.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 162 अंक गिरकर 72,906 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi has said that the trust of the people and the dedication of millions of party workers have been his greatest sources of strength. Addressing the Viksit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi today, Mr. Modi said that the people's trust accumulated over 25 years and the experience gained during this period are a great asset. The Prime Minister also said that this is the time to set big targets for Bharat. Attributing his entire political journey to the unwavering faith and support of the citizens, Mr. Modi said that the present government's policy focuses on solutions for all citizens.
2: देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इसलिए देश के लिए मेरा दायित्व भी सबसे अधिक है। और मैं हृदय से ये मानता हूं कि देश के हर नागरिक का मुझ पर सबसे बड़ा हक है। ये 25 वर्ष का जनविश्वास बहुत बड़ी पूंजी है और ये पूंजी देश की है। मां भारती की हर संतान इस पूंजी की अधिकारी है।
1: Prime Minister Modi said that India, once associated with discussions on policy paralysis, is now increasingly being discussed for its growing strength and resilience. After nearly 3.5 years, the Reserve Bank of India today raised key benchmark repo rate by 25 basis points to 5.5% in a bid to tame rising inflation amidst global uncertainties. Announcing the bi-monthly monetary policy, RBI Governor Sanjay Malhotra said, the Monetary Policy Committee, MPC, unanimously decided to raise the policy repo rate by 25 basis points.
3: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions, developments and the outlook, the MPC voted unanimously to increase the policy repo rate under the LAF by 25 basis points to 5.5%. Consequently, the STF rate stands adjusted at 5.25% and the marginal standing facility rate and the bank rate to 5.75%. The MPC also decided to change the stance to calibrated tightening by a majority of 4-2.
1: The last repo rate hike was in February 2023 by 25 basis points to 6.5%. The rates were unchanged through 2023-24 before beginning its rate cut cycle in 2025. Meanwhile, retail inflation rose to 4.82% in August as compared to 4.45% in the previous month. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India's partnership with Africa is being built not just for today, but for generations to come. Addressing a gathering at the Foreign Service Institute of Ghana in Accra, he said diplomacy must manage competition without allowing it to turn into confrontation and promote cooperation despite differences in interests. Dr. Jayashankar highlighted India's progress in the economy, infrastructure, digital technology and manufacturing. He stressed the need for India and Africa to turn their young populations into skilled and empowered citizens. India has rejected the Organization of Islamic Cooperation's OIC's remarks on Jammu and Kashmir and India's actions against terror infrastructure in Pakistan. Speaking at the UN General Assembly 6th Committee, Lok Sabha MP Biplab Kumar Deb said those making the remarks were unable to distinguish between the victim and the perpetrator. He asserted that India has the right to defend its people against cross-border terrorism emanating from Pakistan. Delhi Traffic Police has issued a traffic advisory in view of the proposed demonstration at the office of the Delhi's Chief Electoral Officer today from 12 noon to 3:30 p.m. It said that traffic movement in and around Kashmiri Gate area is likely to be affected. The Traffic Police advised commuters to avoid affected stretches, plan their journeys in advance, use alternate routes and follow the directions of Delhi Traffic Police personnel. And benchmark domestic equity indices were trading around 0.3% down in forenoon session today. Sensex lost 162 points to 72,906, while Nifty fell 89 points to 22,687 when reports last came in. On the sectoral front, auto, metal and consumer durables led the decline, while banking and financial services bucked the trend. And that is the end of this news bulletin.

0: FM Rainbow 101.9.
1: वेलकम बैक दोस्तों, आकाशवाणी के उसी FM Rainbow 101.9 पर हम पहुंच चुके हैं अगले सेगमेंट में, यानी कि यादों की बारात में। उससे पहले ज्ञानचंद जी का ज्ञान। एक बार ना श्रीमती ज्ञानचंद जी ने ना ज्ञानचंद जी से पूछा कि आपको याद है ना, याद है क्या, आपको याद है कि जब आप मुझे देखने आए थे तब मैंने किस रंग की साड़ी पहनी थी। इस पर ज्ञानचंद जी ने कहा कि नहीं। इस पर श्रीमती ज्ञानचंद जी ने कहा कि इसका मतलब है कि आप मुझसे प्यार ही नहीं करते। तो ज्ञानचंद जी ने कहा कि अरे ऐसी बात नहीं है श्रीमती जी, जब कोई पटरी पर लेटने जाता है तब वो यह थोड़ी देखता है कि ट्रेन शताब्दी है या राजधानी। भाई उसके बाद में क्या हुआ होगा ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जोड़ों का दर्द तो जोड़े ही जानते हैं। अब उनकी याद कहाँ तक है मुझे नहीं पता, पर हाँ हम जिस सेगमेंट में है यादों की बारात, वहां हर गीत एक याद जगाता है, जहां बीता हुआ कल फिर से मुस्कुराता है और दिल पुराने सुरों में खो जाता है, क्योंकि कुछ गीत केवल सुने नहीं जाते, वे हमें किसी दौर में वापस ले जाते हैं। क्योंकि यादें पुरानी अवश्य होती हैं, पर उनका संगीत कभी पुराना नहीं होता। लेकर आए हैं हम सुरों की सौगात, पेश है यादों की बारात। और आज यादों की बारात हम ले लिए चलते हैं जद्दन बाई और सरस्वती देवी के बाद तीसरी और सबसे सफल महिला संगीत निर्देशक उषा खन्ना जी के द्वार। तो चलिए उसी और बढ़ते हैं। स्टे ट्यून्ड।

0: 101.9
1: ఇరానీ చాయ్,
2: బన్ మస్కా,
1: హైదరాబాదీ బిర్యానీ,
2: టంగ్ ది కబాబ్,
1: కుర్బానీ కా మీఠా,
2: షహదూద్ మలాయ్.
1: హైదరాబాద్ ఇస్ అ గ్రాండ్ బఫే
2: అండ్ ఎవ్రీ డిష్ హ్యాస్ అ స్టోరీ వెయిటింగ్ టు బి టోల్డ్.
1: ఎగ్జాక్ట్లీ, దట్స్ వై జష్నే హైదరాబాద్ ఇస్ యువర్ ఆఫ్టర్నూన్ ట్రీట్
2: ఫ్రమ్ 2 to 3 PM ఎవ్రీ డే ఆన్ FM రెయిన్బో 101.9.
1: ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఫుడ్,
2: ఇట్స్ కల్చర్, హిస్టరీ అండ్ ఫ్లేవర్ రోల్డ్ ఇన్ టు వన్.
1: జష్నే హైదరాబాద్.
3: और साथियों, आकाशवाणी को उसी FM रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं यादों की बारात, आपकी धड़कन पर जीती आरजे प्रीति के साथ. साथियों, विचार कीजिए, फिल्मी दुनिया में एक ऐसा दौर जहां म्यूजिक डायरेक्टर सुनते ही ज्यादा नाम पुरुषों के याद आते थे, और तभी मात्र एक 17 साल की लड़की एंट्री लेती है और कहती है कि धुन मैं दूंगी. और ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं था, ये हकीकत थी उषा खन्ना जी की. जी हाँ साथियों, मात्र 17 वर्ष की उम्र, पहली फिल्म और पहली ही बार में ऐसे गीत कि पूरा देश सुनने लगा. तो आज यादों की बारात ले लिए चलते हैं उषा खन्ना जी के घर, जिनका आज जन्मदिन है. तो सबसे पहले तो उषा खन्ना जी को हम सभी की ओर से जन्मदिन की ढेरों बधाइयां. उषा जी खन्ना, जिन्होंने केवल संगीत नहीं रचा बल्कि उस दौर के बंद दरवाजों वाली संगीत की दुनिया को, दुनिया में ना अपने सुर लगाकर दरवाजा ही खोल दिया था. 7 अक्टूबर 1941 को, यानी कि 7 अक्टूबर 1941 को ग्वालियर में उषा खन्ना जी का जन्म हुआ. जी हाँ, वही ग्वालियर जहाँ हवा भी सुर लगाकर चलती है. और फिर सन 1959 यानी कि 1959 में आई दिल दे के देखो. जी हाँ, उम्र लगभग 17 वर्ष और हाथ में जिम्मेदारी फिल्म का संगीत. और पहली ही फिल्म में बड़े हैं दिल के काले, यार चुलबुला है, और हम और तुम और ये समाज जैसे गीतों ने उनकी धुनों को पहचान दिला दी. और यादों की बारात में हम

खन्ना जी के सफर के उन पलों को पलटने का प्रयास करेंगे जहां हर मोड़ पर एक किस्सा है और हर किस्से के पीछे एक यादगार धुन। तो जब बात उनके इस गीत की चल रही है, तो चलिए इसी ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दिल देखे देखो की ओर।

0: సెబీ వారి ఇన్వెస్టర్ అవగాహన కార్యక్రమం. మరింత సమాచారం కోసం సెబీ ఇన్వెస్టర్ వెబ్సైట్ ను సందర్శించండి లేదా సెబీ సారథి యాప్ ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
1: और साथियों आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर यादों की बारात में आज हम उषा खन्ना जी के बारे में आपके साथ जानकारी साझा कर रहे हैं. साथियों कल्पना कीजिए, सामने फिल्मी दुनिया के बड़े बड़े लोग और सामने खड़ी एक ऐसी लड़की जिसे देखकर पहला ख्याल शायद यही आया होगा कि यह लड़की यहाँ संगीतकार बनने आई है या फिर ऑटोग्राफ लेने, है ना. परंतु कौन जानता था कि यह लड़की ऑटोग्राफ लेने नहीं बल्कि अपना नाम लिखने आई है और फ्यूचर में वही ऑटोग्राफ देने वाली बनने आई है. जी हाँ, उषा खन्ना जी. गीतकार इंदिवर ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें फिल्मकार शशधर मुखर्जी से मिलवाया. उषा जी बताती थी कि उस मुलाकात के

लिए उन्हें साड़ी पहना कर ले जाया गया ताकि वे अपनी उम्र से थोड़ी बड़ी लगे। यूजुअली अक्सर लोग जो है अपनी उम्र से थोड़े से छोटे दिखना चाहते थे, पर वहां परिस्थिति कैसी थी देखिएगा। और अब परीक्षा शुरू हुई। पहले उनसे गाने को कहा गया, उन्होंने गाया। फिर सवाल आया कि क्या तुम लता मंगेशकर और आशा भोसले से बेहतर गा सकती हो? तो उषा जी का जवाब था नहीं। अब अगला सवाल, तो फिर गायिका क्यों बनना चाहती हो? और यही उषा जी ने बाजी पलट दी। इंदिवर जी ने बताया कि ये लड़की केवल गाती नहीं है, धुने भी बनाती है। तो फिर हारमोनियम सामने आ गया। उषा जी ने अपनी बनाई धुने सुनाई और शशिधर मुखर्जी प्रभावित हुए और उन्हें कुछ पंक्तियां देकर वही धुन बनाने को कहा। उषा जी ने धुन बनाई और फिर उन्हें अगली फिल्म के लिए हर दिन 4 नई धुनें तैयार करने का अवसर मिला। विचार कीजिए, केवल 16-17 वर्ष में उम्र 17 वर्ष की उम्र और हर दिन 4 धुनें। उस उम्र में अधिकतर लोग ये तय नहीं कर पाए नहीं ये तय कर रहे होते हैं कि हमें बड़े होकर क्या बनना है, और उषा जी तय कर रही थी कि अगली धुन कैसी होगी। और इसी मेहनत ने आगे चलकर जन्म दिया दिल दे के देखो कि उस संगीत को, जिसका भी आपने गीत सुना, जिसने उषा खन्ना जी को पहचान दिलाई। परंतु कहानी में एक और मजेदार मोड़ था। जब वे रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंची तो कुछ लोगों ने ना उन्हें देखकर सीटियां तक बजा दी, क्योंकि उन्हें क्या पता था कि जिसे वो बच्ची समझ रहे हैं वही इस संगीत की जिम्मेदार है। उषा खन्ना जी ने जवाब शब्दों से नहीं दिया बल्कि हारमोनियम पर दिया। और गौर करने वाली बात यह है कि जिन्होंने इतनी कम उम्र में ऐसी धुनें रच दी, उन्हें राग का ज्ञान कितना था, ताल की समझ कितनी थी। और क्या आप विश्वास करेंगे कि जिस संगीत की दुनिया में उतरकर उन्होंने इतिहास रचा, उसकी बकायदा तकनीकी पढ़ाई उन्होंने की ही नहीं थी? अब तो फिर आप सोचेंगे कि धुनें कहाँ से आती थी। तो इसका उत्तर ही तो उषा खन्ना जी के जीवन का सबसे खूबसूरत राज है, जिसे जानने के लिए जुड़े रहिएगा यादों की बारात में।

0: రాకుంది మామా. ఈ ప్లేస్లు ఈ డిష్లు ఎట్లా తెలుస్తాయి మామా నీకు ఇవన్నీ?
1: జష్నే హైదరాబాద్, జష్నే హైదరాబాద్.
2: और साथियों आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं यादों की बारात, जो आज हम ले चले हैं उषा खन्ना जी के द्वार. जी हाँ, म्यूजिक कंपोजर उषा खन्ना जी के द्वार. और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि केवल अभी जो पिछला एक जो गीत था जो कि फरमाइश था, उसको छोड़कर हमने सारे गीत आप तक जो है उषा जी के द्वारा जो म्यूजिक दिए गए हैं वही सुनाए हैं. और आगे बढ़ते हैं उषा जी की कहानी की. और तो भाई दोस्तों, कल्पना कीजिए कि संगीत सीखने के लिए गुरु चाहिए, किताब चाहिए, रियाज चाहिए, परंतु यदि मैं आपसे कहूं कि एक लड़की ने इन सब के बिना केवल सुरों को महसूस करके फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बना ली, तो चौंक जाएंगे ना. हाँ, पर पिछले टॉक में ही मैंने जो आपके साथ राज की बात की थी वो यही है. उषा जी स्वयं कहती हैं कि उन्होंने संगीत की औपचारिक या तकनीक शिक्षा नहीं ली थी. राग, ताल और संगीत की बारीक तकनीक जो है तकनीकें बाकायदा सीखने के बजाय उनके अंदर धुन बनाने की एक सहज समझ थी, और इसे वो माँ सरस्वती का आशीर्वाद ही मानती हैं. और उनके लिए संगीत की पहली पाठशाला थी उनका अपना घर. उनके पिता मनोहर खन्ना भी संगीत से जुड़े हुए थे और घर में हारमोनियम भी था. उषा जी ने बताया कि पिता ने, जी हाँ वे स्वयं बताती हैं कि पिता ने हारमोनियम की कुंजियों पर ही सा रे ग म लिख दिया था. जी हाँ, आज बच्चे एबीसीडी की कॉपी लेकर बैठते हैं, पर उषा जी ना कुंजियों पर ही जो है उन्होंने तो पूरा हारमोनियम ही सुरों की कॉपी के रूप में मिल गया था उन्हें. और धीरे धीरे वो सुनती गई, महसूस करती गई और फिर धुने बनाती गई. उनके लिए संगीत का सबसे अहम हिस्सा था मेलोडी, यानी कि धुन. और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी. जहां दूसरे लोग सुरों को नियमों में तलाशते हैं, उषा खन्ना जी जो है वो उन्हें दिल में पकड़ लेती थी. हारमोनियम की कुंजियों पर लिखे अक्षर सा रे ग म से शुरू हुआ यह सफर कुछ ही वर्षों बाद फिल्मों के हजारों श्रोताओं की यादों में अपनी धुन लिखने लगा. और शायद कुछ सुर जो है सीखे नहीं जाते, केवल पहचाने जाते हैं, और उषा खन्ना जी उन सुरों को पहचानने वाली खास शख्सियत थी. पर सुरों के साथ साथ वो किसी और चीज की भी पारखी थी. किसकी, जानेंगे हम उषा खन्ना जी द्वारा इस गीत के बाद.

101.9 और साथियों आकाशवाणी के उसी एफएम में 101.9 पर आप सुन रहे हैं यादों की बारात, आपकी धड़कन पर जीती आरजे प्रीति के साथ। जी हाँ, वही यादों की बारात जो आज हम ले चले हैं उषा खन्ना जी के द्वार। जी हाँ साथियों, कभी कभी किसी आवाज को पहचानने के लिए ना मात्र कानों की नहीं एक पारखी दिल भी चाहिए, एक दिल पारखी दिल की भी आवश्यकता होती है, और उषा खन्ना जी के पास ये हुनर बाखूबी था। उषा खन्ना जी ने अपने सुरों की दुनिया स्वयं बनाई थी, परंतु जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी खासियत केवल धुन पहचानना नहीं थी, वो आवाज भी पहचानना जानती थी। उन्होंने अपने दौर में कई ऐसे नए नायकों को मौका दिया जो उस समय इंडस्ट्री में बड़े नाम नहीं थे, जैसे कि पंकज उदास, शब्बीर कुमार, विनोद राठौड़, मोहम्मद अजीज, सोनू निगम और उदित नारायण जैसे नाम उनकी पारखी नजर से होकर गुजरे हैं। और पंकज उदास का किस्सा तो बहुत खास है। उषा खन्ना ने उन्हें सुनकर फिल्म कामना में गाने का अवसर दिया था। सन 1972 यानी कि 1972 वो वर्ष था और गीत था तुम कभी सामने आ जाओ तो पूछूं तुमसे। यही पंकज उदास की शुरुआती फिल्म, यही जो है वो पंकज उदास का शुरुआती फिल्म प्लेबैक था। और आज जिस आवाज को हम गजल के बेताज बादशाह के रूप में याद करते हैं, कभी वो एक नए चेहरे और एक नई आवाज की तरह स्टूडियो के दरवाजे पर खड़े थे। और यही उषा खन्ना जी की खूबसूरती थी, उन्हें केवल सितारे नहीं चाहिए थे, उन्हें हुनर चाहिए था। शायद इसीलिए उनकी धुनों में केवल संगीत नहीं था, दूसरों के सपनों के लिए भी जगह थी।

0: 101.9
1: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026లో భాగంగా డ్రాఫ్ట్స్ ఓటర్ల జాబితాలో మీ పేరు ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఒకవేళ జాబితాలో మీ పేరు లేకపోతే కొత్తగా ఓటరు నమోదు చేసిన దానికి ఫామ్ 6 తో పాటు డిక్లరేషన్ ఫామ్, అభ్యంతరాలకు ఫామ్ 7, సవరణలకు ఫామ్ 8 ద్వారా ఆగస్టు 17 నుంచి అక్టోబర్ 7 లోపు ఆన్లైన్ లో voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ ద్వారా లేదా ఆఫ్లైన్ లో ఏఆర్ఓ, ఏఈఆర్ఓ లేదా డిఎల్ఓ కు మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. వివరాలకు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1950 కు కాల్ చేయండి. జారీ వారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి తెలంగాణ.
0: FM Rainbow 101.9
2: और साथियों आकाशवाणी की उसी एफएम रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं यादों की बारात आपकी धड़कनों पर जीती आरजे प्रीति के साथ. और आज हम ये यादों की बारात ले चले हैं उषा खन्ना जी के पास. जी हाँ, जिनका आज जन्मदिन है. तो साथियों, एक फिल्म छोटी हो सकती है, बजट छोटा हो सकता है, सितारे भी छोटे हो सकते हैं, परंतु क्या एक छोटी फिल्म से निकली धुन बहुत बड़ी हो सकती है? जी हाँ, इस उषा खन्ना जी का जवाब था बिल्कुल, और ऐसी कि सालों बाद भी लोग गुनगुनाएंगे. यही तो उषा खन्ना जी की सबसे बड़ी विशेषता थी. उनके करियर में बड़े बैनर और बड़े सितारे सदैव नहीं आए. कई बार उन्होंने छोटे बजट की फिल्मों के लिए भी संगीत दिया. उनके लिए फिल्म ए है, बी है या सी है, इससे ज्यादा मायने रखता था गाना अच्छा बनाना. उषा जी का कहना था कि लोग फिल्मों को श्रेणियों में बांटते हैं, परंतु मैं तो सिर्फ संगीत बनाती हूँ. और उनका एक मजेदार तरीका भी था. यदि मुकेश जी के लिए धुन बनानी हो तो वे मन में राज कपूर जी को रखती थी. किशोर कुमार साहब के लिए धुन बनानी हो तो वे देवानंद जी को, और रफी साहब के लिए धुन बनानी हो तो फिर दिलीप कुमार जी को. फिल्म का बजट चाहे छोटा हो, उषा खन्ना जी की कल्पना का बजट सदैव बड़ा ही होता था. और शायद इसीलिए साथियों उनकी कई धुनें ऐसी फिल्मों से निकली जिन्हें आज बहुत कम लोग याद करते हैं, परंतु उनके गाने आज भी याद हैं. छोड़ो कल की बातें, या फिर जैसे जो अभी हमने सुना, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, या फिर शायद मेरी शादी का ख्याल. यस, ये मात्र गीत नहीं है, उषा खन्ना जी की वो धुनें हैं जिन्होंने फिल्मों की सीमाएं पार कर दी. यही उनकी असली विरासत है. एक ऐसे दौर में जब महिला संगीतकार होना अपने आप में बड़ी चुनौती थी, उषा खन्ना जी ने दशकों तक अपनी पहचान बनाए रखी. आज यादों की बारात में हम मात्र उनका जन्मदिन नहीं मना रहे हैं, हम उस हिम्मत को सलाम कर रहे हैं जिसने कहा फिल्म छोटी हो सकती है मगर धुन सदा बड़ी होनी चाहिए. क्योंकि कुछ संगीत सिर्फ सुने नहीं जाते, वो याद बनकर हमेशा हमारे साथ चलते हैं यादों की बारात में. जब हम ये यादों की बारात का सफर सुन रहे हैं, उनके गीत सुन रहे हैं, तो हमारा दिल भी शायद कहीं ना कहीं यही कह रहा है. Yes, हम

साथियों, हम भी अपने वादे और नहीं भूलेंगे और कसमें नहीं तोड़ेंगे, इसीलिए तो ठीक 1 बजे आपको हम ले चल रहे हैं दिल ए रुबानी की ओर। स्टे ट्यून्ड।

FM Rainbow 101.9 और साथियों आकाशवाणी के उसी FM Rainbow 101.9 पर आप और हम पहुंच चुके हैं अपने अगले सेगमेंट दिल ए रुबानी की ओर। ज्ञानचंद जी ने श्रीमती ज्ञानचंद जी से फोन पर पूछा कि कहाँ हो, तो श्रीमती ज्ञानचंद जी ने कहा कि तुम्हारे दिल में। इस पर ज्ञानचंद जी ने तपाक से कहा कि भाई श्रीमती जी, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाया करो, ना रहा करो। अब आप समझ सकते हैं कि ज्ञानचंद जी के दिल में कितनी भीड़ है। पर ये बात आप श्रीमती जी को मत बताइए उनके, वरना उनके घर में क्या होगा इसके लिए जिम्मेदार मैं नहीं बनना चाहती हूँ। खैर, जो भी उस इस बात के बाद में हुआ होगा वो मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, है ना, क्योंकि जोड़ों का दर्द तो जोड़े ही जानते हैं। दिल, साथियों, दिल भी बड़ी अजीब चीज है साहब। कभी केवल स्वयं के बारे में ही सोचता है तो कभी दुनिया के बारे में, और इस मैं से हम का सफर है दिल ए रुबानी। और हाँ, रुबानी का अर्थ केवल खूबसूरत बातें नहीं, बल्कि यहाँ खूबसूरत कामों की बातें होंगी। बातें होंगी ऐसे लोगों की जो किसी की सहायता करने से पहले ये नहीं सोचते कि मुझे इसमें क्या मिलेगा, बल्कि यह सोचते हैं कि कहीं किसी को मेरी जरूरत तो नहीं। किसी की मुश्किल आसान कर देना, किसी के चेहरे पर मुस्कान लौटा देना, तो किसी के लिए अपना समय निकालना, यही तो है कम्युनिटी काइंडनेस। बिना शोर, बिना दिखावे, बस इंसान से इंसान का रिश्ता, दिल ए रुबानी। तो अगले एक घंटे में

मेरी आवाज में मजा नहीं आएगा, मजा तो इसी आवाज में आएगा। केस जी की आवाज में।

0: సెబీ వారి ఇన్వెస్టర్ అవగాహన కార్యక్రమం. మరింత సమాచారం కోసం సెబీ ఇన్వెస్టర్ వెబ్సైట్ ను సందర్శించండి లేదా సెబీ సారథి యాప్ ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
1: और साथियों आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं दिल ए रुबानी आपके धड़कन पर जीती आरजे प्रीति के साथ. और साथियों कहते हैं ना कि जन्मदिन पर लोग केक काटते हैं, मोमबत्तियां बुझाते हैं और विश करते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी जिंदगी दूसरों के जीवन में उम्मीद की रोशनी जला देती है. आज 7 अक्टूबर है और आज ही के दिन सन 1933 यानी कि 7th अक्टूबर 1933 को तमिलनाडु के कांचीपुरम में जन्म हुआ था एक ऐसे इंसान का जिन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा दूसरों के लिए समर्पित कर दिया. नाम है दामल कंदलाई श्रीनिवासन. शुरुआत उनकी भी बिल्कुल आम थी साथियों. पढ़ाई की, अर्थशास्त्र में स्नातक हुए और फिर जो है MBA किया और पेट्रोलियम तथा FMCG के कारोबार में आए. यानी चाहे तो आराम से रह सकते थे, जिंदगी की गाड़ी अच्छे ट्रैक पर ही चल रही थी, परंतु श्रीनिवासन जी ने एक अलग रास्ता चुना. गरीबों के लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का काम उन्होंने शुरू किया. शुरुआत इतनी छोटी कि रविवार को पेड़ के नीचे डॉक्टरों के साथ बैठकर गरीब मरीजों का इलाज किया जाता था. इसी प्रयास को मजाकिया सी लगने वाली लेकिन बेहद अर्थपूर्ण पहचान मिली, 10 पैसे का अस्पताल. जी हाँ, और वही छोटी सी पहल आगे चलकर चेन्नई के हिंदू मिशन हॉस्पिटल जैसी संस्था के रूप में विकसित हुई. सन 1982 यानी कि 1982 में ताम्बरम में एक छोटे से शेड से शुरू हुई यह पहल आज एक बड़े चिकित्सा संस्थान के रूप में जानी जाती है. और सन 2016 यानी कि 2016 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया समाज सेवा के लिए. तो आज दिल ए रुबानी में ऐसे व्यक्ति की कहानी जो सिखाती है कि दिल बड़ा हो तो सेवा की शुरुआत के लिए साधन नहीं केवल इरादा चाहिए. जी हाँ साथियों, और यहाँ पर हम आपको एक विशेष जानकारी भी देना चाहते हैं, परंतु ठीक है विशेष जानकारी आपको दे तो दिए देते हैं, क्या पता है भूख लग रही है ना, तो बस वही जानकारी है आपके लिए.
2: ईरानी चाय,
3: बन मस्का,
2: हैदराबादी बिरयानी,
3: टंगदी कबाब,
2: कुर्बानी का मीठा,
3: शहदूद मलाई.
2: Hyderabad is a grand buffet.
3: And every dish has a story waiting to be told.
2: Exactly. That's why Jashne Hyderabad is your afternoon treat.
3: From 2 to 3 p.m. every day on FM Rainbow 101.9.
2: It's not just food.
3: It's culture, history and flavor rolled into one.
2: Jashne Hyderabad.
4: FM Rainbow 101.9.

साथियों आकाश आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 हम दिल में दिल ए रुबानी के साथ तो आगे बढ़ ही रहे हैं और साथ साथ आपके मैसेजेस भी शामिल कर रहे हैं। रेडियो सर्वर शौकीन जिन्हें मैसेज भेजा है और एक प्यारे से जी हाँ उनके पास काफी सारे कैसेट्स रेडियो टेप रिकॉर्डर्स बहुत सारी चीजें हैं। वाह ग्रेट ग्रेट कलेक्शन शौकीन जी। और एक प्यारे से गीत की फरमाइश की है तो फिलहाल चलिए हम उसी प्यारे से गीत की ओर बढ़ते हैं। साथ ही वैसे यदि आप भी कोई मैसेज भेजना चाहते हैं या फिर कोई गीत किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है +9104023234822। स्टे ट्यून्ड।

गुरुकुल से जुड़े और जरूरतमंद और शरणार्थी बच्चों की शिक्षा और देखभाल से जुड़ा संस्थान था ये वेल्लुवर गुरुकुलम। श्रीनिवासन जी इसके सचिव के रूप में भी जुड़े रहे। उनके लिए किसी बच्चे की आवश्यकता केवल दवा से पूरी नहीं होती थी, कभी उसे किताब चाहिए, कभी स्कूल और कभी ऐसा सहारा जो उसके भविष्य पर भरोसा करे। और यहीं से जो है उनकी सोच का एक और पहलू सामने आता है। किसी की आज की परेशानी दूर करना जरूरी है, ठीक है, लेकिन उसके कल को बेहतर बनाना उससे भी बड़ी सेवा है। जी हाँ साथियों, दोस्तों, श्रीनिवासन जी की कहानी में अब आने वाला मोड़ बिल्कुल अलग है। एक ऐसी प्राकृतिक आपदा जिसने लोगों से उनके घर, रोजगार और सहारे तक छीन लिए थे, उस वक्त बहुत लोग सहायता लेकर पहुंचे, लेकिन श्रीनिवासन जी की सोच केवल आज खाना पहुंचा दो तक नहीं रुकी। उन्होंने सोचा कि जब सहायता करने आए ही हैं तो इन्हें फिर से अपने पैरों पर खड़ा करके ही लौटेंगे। और उस सोच को जमीन पर कैसे उतारा और कितने लोगों की जिंदगी उस एक फैसले से बदल गई, यह जानने के लिए सुनते रहेगा रेनबो एफएम 101.9 में आपके धड़कनों पर जीते आरजे प्रीति के साथ दिल ए रूबानी।

0: సెబీ వారి ఇన్వెస్టర్ అవగాహన కార్యక్రమం. మరింత సమాచారం కోసం సెబీ ఇన్వెస్టర్ వెబ్సైట్ ను సందర్శించండి లేదా సెబీ సారథి యాప్ ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
1: FM Rainbow 101.9
2: और साथियों आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं दिल ए रुबानी आपकी धड़कन पर जितनी आरजी प्रीति के साथ. और मैसेजेस की और भी बढ़ूं तो डॉक्टर खान एंड फैमिली निजामबाद से मैसेज करते हैं. ग्रीटिंग्स प्रीति मैम. ओ थैंक यू सरप्राइज वेलकम बैक स्टे ब्लेस्ड थैंक यू थैंक यू. और सडनली टर्न इन मोबाइल गॉट शॉक्ड नो हिंट अबाउट योर शो. चलिए ऐसे ही सरप्राइज और शॉक्स मिलते रहने चाहिए. वैसे सरप्राइज के हद तक अच्छा है, शॉक नहीं मिलने चाहिए क्योंकि भाई आप भी तो डॉक्टर आप भी जानते हैं कि उसका रिपरकुशन क्या होगा. और कहते हैं कि अबाउट शो होप होप यू आर डूइंग वेल. यस सर आपकी दुआओं से. और एक प्यारे से गीत की फरमाइश आपने की है. यस मैं वो गीत प्ले करूंगी श्रीनिवासन जी के बारे में बताने के बाद. जी हाँ साथियों, मुसीबत और सुनामी में ना एक चीज कॉमन है, दोनों आने से पहले अपॉइंटमेंट नहीं लेती. और सन 2004 में आई सुनामी तो ऐसी आई कि तमिलनाडु के तटीय इलाकों में लहरें सिर्फ पानी नहीं लोगों की पूरी जिंदगी बहा ले गई. कई परिवारों के घर उजड़ गए, बच्चों की पढ़ाई रुक गई और जिंदगी जैसे एक पल में पटरी से उतर गई. ऐसे समय में साथियों श्रीनिवासन केवल राहत पहुंचाने के लिए नहीं रुके, उन्होंने प्रभावित लोगों के पुनर्वास पर काम किया, घर बनाने में सहायता की और प्रभावित स्कूलों के लिए फर्नीचर व जरूरी शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने जैसे कामों से जुड़े. क्योंकि उनके लिए सहायता का अर्थ केवल आज खाना पहुंचा दिया अब अगला काम ये नहीं था. उनकी सोच थी जिसकी जिंदगी बिखर गई है उसे दोबारा खड़ा कैसे किया जाए. और यही फर्क है राहत और पुनर्वास में. राहत आपको मुश्किल से निकालती है, पुनर्वास आपको पुनः अपने पैरों पर खड़ा करता है. और इस राहत जो है इस पुनर्वास में उन्होंने अपना जी तोड़ योगदान दिया. इतने अलग अलग क्षेत्रों में सेवा करने की प्रेरणा उन्हें आखिर कहां से मिली? यह क्या एक संस्था का काम था या इसके पीछे दशकों से तैयार हो रही एक सोच थी जिसने उनके जीवन की दिशा ही तय कर दी थी? ये हम पुनः इस गीत के बारे में बताने की कोशिश करेंगे. स्टे ट्यून्ड.

साथी, यदि आप भी ऐसा ही साथ चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है +91040232342। और जी हाँ, आप ये गीत सुनने के लिए बेताब हैं ये मैं जानती हूँ, और कुछ तकनीकी खराबी के कारण हम जो है ये गीत आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। चलिए फिर भी एक और बार कोशिश करते हैं आप तक ये गीत प्यारा सा पहुंचाने की। लेट्स ट्राई। कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है।

क्या कमी। जी हाँ साथियों, बस हम ऐसे ही आपका साथ सदैव चाहते हैं। और आज दिल ए रुबानी में श्रीनिवासन जी के बारे में जानकर अवश्य हम ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि हम क्या पा सकते हैं, से पहले हम ये सोचे कि हम क्या दे सकते हैं और हम अपने हिस्से से कितना कर सकते हैं, ये हमें अवश्य सोचना चाहिए। और ये थी आज दिल ए रुबानी की बात। और मैसेजेस भी, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे मैसेजेस हैं, पर फिर भी जिनके हम शामिल कर पाए उनके ठीक है, नहीं कर पाए उनके लिए हम दिल से क्षमा चाहते हैं। और मैसेज भेजा है मीना जी ने कि प्रीति जी गाने में तो बहुत मजा आया, बस आपके मजे के लिए ही हम यहाँ पर आपके गीत आप तक जो है पेश करते हैं। और सरवर जी, रेडियो शौकीन सरवर जी भी जो है उषा खन्ना जी की कैसेट्स हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों चलिए फिर इसी तरह आपसे पुनः मुलाकात की आशा और विश्वास साथ

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।

0: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
1: सजग भारत,
0: जागरूक भारत,
1: सशक्त भारत।
0: सुनिए सजग भारत
1: हर सोमवार सुबह।

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: हर सोमवार सुबह 11 बजे सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति,
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: हर सोमवार सुबह 11 बजे सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM 101.9 MHz पर, और हमें आप सुन रहे हैं मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। समय स्टूडियो की घड़ी में 9:30 हो चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नयरंग प्रोग्राम पेश होता है आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो पर हर शब 9:30 पर। तो इसी सिलसिले के तहत यानी 9:30 पर नयरंग प्रोग्राम लेकर हम हाजिर हैं। सुनते रहिए हमारा ये प्रोग्राम जो कि नश्र होता है हर शब यहीं पर यानी आकाशवाणी हैदराबाद पर। प्रोग्राम नयरंग का आगाज हो सामाइन, आइए सुनते हैं ये मुतासर करने वाला शेर। किसी शायर ने खूब कहा है कि गिरते हैं शह सवार ही मैदाने जंग में, गिरते हैं शह सवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जी हां सामाइन, ये शेर वाकई एक ऐसी रोशन मशाल है जो इंसान के अंदर छिपे खौफ खौफ को खत्म करके उसे अमल की दुनिया में कदम रखने की तवानाई देती है। इस शेर का असर इसलिए इतना गहरा है क्योंकि ये नाकामी की तारीफ ही बदल देता है। इंसान अक्सर गिरने, गलती करने या नाकाम होने से डरता है, लेकिन ये शेर याद दिलाता है कि ठोकरें सिर्फ उन्हीं को लगती हैं जो बड़े ख्वाब देखने और उनके ताखुब का जिगर रखते हैं। जो लोग अपने आरामदेह दायरे कंफर्ट जोन में महसूर रहते हैं, वो बाज़ाहिर हर तरह के नुकसान और तनख़ीद से महफूज रहते हैं, लेकिन वो कभी बुलंदियों का एहसास नहीं कर सकते। इसके बरक्स मैदान में उतरने वाले शह सवार का गिरना उसकी शिकस्त नहीं बल्कि इस बात की गवाही है कि वो मैदाने अमल में मौजूद है और जिद्दोजहद कर रहा है। जब भी जिंदगी में किसी नए इकदाम से डर लगे या किसी नाकामी के बाद दिल छोटा होने लगे, तो ये शेर, गिरते हैं शह सवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, को याद कीजिएगा, क्योंकि ये शेर इंसान को याद दिलाता है कि हर ठोकर आपके बाहिम्मत होने का तमगा है, कोई ऐब नहीं। जी हां सामाइन, इसी शेर के असर को अपने अंदर जगाते हुए आइए शुरुआत करते हैं नए रंग प्रोग्राम की।

0: खड़े हो सकते हैं। अच्छा इंसान कमजोर नहीं होता, वो सिर्फ ये जानता है कि अपनी ताकत का इस्तेमाल किस तरह करना है। और शायद सबसे मुश्किल काम है गुस्से के वक्त अच्छा इंसान रहना। जब कोई आपको तकलीफ पहुंचाए तो बदला लेना आसान है, तल्ख जवाब देना आसान है, लेकिन एक लम्हे के लिए रुक जाना और सोचना क्या मेरा जवाब इस मसले को बेहतर करेगा या मजीद खराब, ये मुश्किल है और यही असल इम्तिहान भी है। हम सबसे गलतियां होती हैं, कभी हम गुस्सा करते हैं, किसी का दिल दुखा देते हैं, कभी गलत फैसला करते हैं। अच्छा इंसान वो नहीं जिसे कभी गलती ना हो, अच्छा इंसान वो है जो अपनी गलती को तस्लीम करने का हौसला रखता हो, जो कह सके हाँ मुझसे गलती हुई। सिर्फ 3 अल्फाज, लेकिन इन 3 लफ्जों के लिए कभी कभी बहुत बड़े हौसले की जरूरत होती है। इसी तरह माफी मांगना भी इंसान को छोटा नहीं करता, बल्कि ये बताता है कि इंसान अपनी अना से ज्यादा अपने रिश्ते की कदर करता है। और दूसरों को माफ करना, ये तो उससे भी बड़ी खूबी है। माफ करने का मतलब ये नहीं है कि आपने दूसरे के अमल को दुरुस्त मान लिया। कभी कभी माफ करने का मतलब ये होता है कि आप अपने दिल को मजीद बोझ उठाने से आजाद कर रहे हैं। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, हम नहीं जानते कि हमारी जिंदगी में कौन सा दिन आखिरी मुलाकात बन जाएगा, कौन सी गुफ्तगू आखिरी गुफ्तगू होगी, कब किसी अपने से दोबारा मिलने का मौका नहीं मिलेगा। तो फिर क्यों ना हम अपने आसपास के लोगों के लिए थोड़ा आसान बन जाएं, घर में एक नर्म जुमला बोल दें, किसी दोस्त का हाल पूछ लें, वालिदैन के साथ कुछ वक्त गुजार लें, बच्चों की बात तवज्जो से सुन लें, किसी बुजुर्ग को इज्जत दे दें और किसी ऐसे शख्स के साथ भी अच्छा बर्ताव करें जिससे आपको कोई फायदा नहीं मिलना। क्योंकि शायद दुनिया आपके बैंक बैलेंस को भूल जाए, आपकी गाड़ी का मॉडल भूल जाए, आपका ओहदा भूल जाए, लेकिन लोग ये जरूर याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस करवाया था, किसी ने उनके मुश्किल वक्त में उनका हाथ थामा था या नहीं, किसी ने उन्हें इज्जत दी थी या नहीं, किसी ने उनकी बात सुनी थी या नहीं। और यही शायद इंसान की सबसे बड़ी मीरास है। इसलिए अगर जिंदगी में एक मकसद जरूर रखना हो तो कामयाब होने के साथ साथ अच्छा बनने का मकसद भी रखिए, ज्यादा नहीं। बस हर रोज अपने आप से एक सवाल कीजिए, क्या आज मैं कल से थोड़ा बेहतर इंसान बना हूँ? अगर जवाब हाँ है तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं। किसी के लिए आसानी पैदा की, अच्छा किया, किसी को माफ किया, अच्छा किया, किसी की मदद की, अच्छा किया, किसी का दिल रखने के लिए अपना लहजा नर्म किया, ये भी अच्छा किया। शायद अच्छा इंसान बनने का सफर भी ऐसा ही है। कोई एक दिन ऐसा नहीं आता जब इंसान अचानक मुकम्मल तौर पर अच्छा बन जाए, ये रोज की कोशिश है। रोज अपने रवैये को बेहतर बनाने की कोशिश, रोज अपनी गलती से सीखने की कोशिश, रोज किसी के लिए आसानी पैदा करने की कोशिश। और आखिर में जब जिंदगी की किताब का आखिरी सफा पलटा जाएगा तो शायद सबसे अहम सवाल ये नहीं होगा कि हमने कितना कमाया, कितनी शोहरत हासिल की, कितनी चीजें जमा की, बल्कि शायद सवाल ये होगा हमने अपने हिस्से की दुनिया को कितना बेहतर बनाया, कितने दिलों को सुकून दिया, कितने चेहरों पर मुस्कुराहट लाए और कितने लोगों ने हमारे जाने के बाद दिल से कहा वो अच्छा इंसान था। अगर हमारी जिंदगी के आखिर में ये जुमला हमारे लिए कहा जाए तो शायद इससे बड़ी कामयाबी कोई और नहीं।
1: एक अच्छा इंसान बनने से बड़ी कामयाबी और कोई चीज़ नहीं, यही बता रही थी मोहतरमा आयशा तजहीन सुबहानी हरफ ताबिंदा में। जी हाँ सामाइन, एक अच्छा इंसान वो नहीं है जो मुकम्मल या बेऐब हो, बल्कि वो है जो मुसलसल बेहतर बनने की कोशिश करता है और जिसके वजूद से दूसरों को अमन व सुकून और फ़ायदा पहुँचे। अच्छे इंसान की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वो दूसरों के लिए बोझ बनने के बजाय उनकी ज़िंदगी को आसान बनाता है। जैसे कहा गया है कि बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाए। वो किसी के काम आकर एहसान नहीं जताता, बल्कि उसे अपना अखलाकी फ़र्ज समझता है। उसके खौल व फेल में तजाद नहीं होता, वो बातचीत में नरमी, सच्चाई और एहतराम को बरकरार रखता है। गुस्से और इख्तलाफ की हालत में भी उसका ज़र्फ कायम रहता है और वो किसी की इज्जत नफ्स को मजरू नहीं करता। अच्छा इंसान की

और बग्ज़ अपने दिल में नहीं रखता, वो लोगों की गलतियों को दरगुजर कर देता है और दूसरों के उयूब पर पर्दा डालता है, बजाय इसके कि उनकी खामियों को उछाले। जी हाँ सामाइन, यही

0: 101.9 MHz.
1: FM Rainbow 101.9. अपने हैदराबाद का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा। हैदराबाद तो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा, यहाँ पे फ्यूचर सिटी भी बनने वाला है। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग बन रही, कंपनियां खुल रही, लोगों की सहूलत के वास्ते रोड, फ्लाईओवर और ब्रिज बनाते जा रहे। तरक्की तो बहुत हो रही मगर एक्सीडेंट भी हो रहे। ट्रैफिक पुलिस और लोगों की भलाई के वास्ते काम करने वाले तंजीमा अपनी पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स बता बता के थक जा रहे। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, एक्सीडेंटों से बचो बोल रहे, मगर अपने हैदराबादिया है कि सुन रहे नहीं। चालाना मारे तो भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। मे को बस इतना ही बोलना है, रोडों पे गाड़ियां नको भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियां चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतजार करते रहते। बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियां चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया ने तो गांधी को पहुंच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत जरूरी है, तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुंचो।
0: आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 MHz पर आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नयरंग। नयरंग में अब आइए सुनते हैं मत सहल हमें जानो सिलसिले के तहत अदबी तकरीर। इस अदबी तकरीर का उन्वान है परवीन शाकिर, फिक्रो फन में, फिक्रो फन के आईने में। और इस तकरीर को पेश करेंगी मोहतरमा सुमैया तमकीन।
2: परवीन शाकिर का शुमार अहद जदीद की नुमाइंदा शायरात में किया जाता है। उनके यहाँ गुनागुन किस्म के तजुर्बात पाए जाते हैं। उनकी शायरी का असल मौजू हुस्न व इश्क है। उनकी शायरी बुनियादी तौर पर इश्क के जज्बात व एहसास के तजुर्बात पर मबनी है, जो उर्दू की इश्किया शायरी के सरमाए में एक मुनफरिद और अनोखा इजाफा समझा जाता है। परवीन शाकिर 24 नवंबर 1952 ईस्वी को कराची में पैदा हुई। उनके वालिद का नाम सैयद शाकिर हुसैन और साकिब तखल्लुस था। आप सूबे बिहार के जिले गया के शेखापुर गांव के रहने वाले थे। परवीन शाकिर बचपन से ज़हीन व फतीह तालिबा थी। अपनी इसी ज़हानत के सबब हर दर्जे में आला नंबरात हासिल करती थी। उन्होंने रिजविया गर्ल्स हाई स्कूल कराची से मैट्रिक का इम्तिहान कामयाब किया और 1971 ईस्वी में सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से बीए ऑनर्स इंग्लिश लिटरेचर से कामयाब किया। उसके अलावा परवीन शाकिर ने लिसानियात के मजमून से भी एमए की डिग्री जामे कराची से हासिल की। अलावा अजी 1992 ईस्वी में मास्टर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हासिल की। परवीन शाकिर महजीब शाइस्ता और आला तालीम याफ्ता खातून थी। आपका अंदाज गुफ्तगु नहायत ही सहल और पुरतकल्लुफ गुफ्तगु से परे था। परवीन ने अपनी गुफ्तगु में मुश्किल और सखील अल्फाज के इस्तेमाल से गुरेज किया और अपनी नरम मिजाजी की वजह से धीमे लहजे में बात करना पसंद करती थी। परवीन शाकिर कम उम्र में ही अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। अपनी सलाहियतों की बिना पर उन्हें 5 बड़े एजाजात से नवाजा गया। 1978 में पहले मजमूए कलाम खुशबू की कामयाबी पर आदराजी अवार्ड से सरफराज किया गया, जो पाकिस्तान में एक कौमी सतह का अवार्ड माना जाता है। इसके अलावा 1985 ईस्वी में उन्हें डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अवार्ड बराए अदब से नवाजा गया। 1986 ईस्वी में USIS अवार्ड दिया गया। उसके बावजूद फैज अहमद फैज इंटरनेशनल अवार्ड से सरफराज किया गया, जो उनकी कामयाबी का बयान सबूत है। इसके अलावा परवीन शाकिर को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड भी अता किया गया, जो हुकूमत पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड तस्लीम किया जाता है। 26 दिसंबर

0: सूरज, प्याज, खैमा जैसी तलमीहात का इस्तेमाल अक्सर व बेशतर किया है। ये तलमीहात और तशबीहात उनके कलाम के कैनवस को वसी करती है और एक अलामती पैराये में नजर आती है। इनकी शायरी में उर्दू के साथ साथ अंग्रेजी, हिंदी और अरबी के अल्फाज का इस्तेमाल भी मिलता है। परवीन शाकिर अपनी अहद की नुमाइंदा शायरात में एक मुनफरिद मुकाम रखती है। इन्होंने अपनी शायरी में न सिर्फ फिक्र फन, जज्बात महसूसात और तजुर्बात से अवाम को वाकिफ करवाया है, बल्कि माशरे में रोनुमा होने वाले वाकयात भी खिलकर सामने आए हैं। इनफरादियत इनका खासा है और उन्होंने अपनी शायरी में इनफरादियत को हाथ से जाने नहीं दिया। यही इनफरादियत को बाकी रखने के लिए उन्होंने नई नई तशबीहात और इस्तेआरात का बरमला इजहार किया। इसके अलावा परवीन शाकिर की शायरी में पैकर तराशी की भी उम्दा मिसालें हमें नजर आती हैं। इन्होंने पैकर तराशी के नए नए अवामिल की जानिब बेहद तवज्जो सर्फ की, यानी अल्फाज और अलाइम के नए नए रास्तों को जिला बख्शी। और उनकी शायरी का खास वस दरअसल यही है कि इन्होंने जदीद तशबीहात और अलामात को बरतते हुए इस बात का खास ख्याल रखा कि वो औरत के जज्बात, ख्यालात, निसाई शख्सियत, मिजाज, फितरत की तख्लीकी तरसील में एक मुनफरिद मुकाम पा सके। अलगर्ज परवीन शाकिर खवातीन शायरात में अपने मुनफरिद लबो लहजे के साथ औरतों के नफसियाती मसाइल को खुश उसलूबी के साथ पेश करने की बिना पर उर्दू शायरी को एक नई फिक्री जहत से रोशनास कराती है।
1: मत सहल हमें जानो इस सिलसिले के तहत अदबी तकरीर आपने समाप्त की। इस तकरीर का उन्वान था परवीन शाकिर फिक्र फन के आईने में, और पेशकश थी मोहतरमा सुमैया तमकीन की। आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 MHz।
2: FM रेनबो 101.9
1: प्रोग्राम नए रंग आप सुन रहे हैं और अब हम दाखिल हो रहे हैं नए रंग के उस हिस्से में जहां पेश होता है प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा। जी हां सामाइन, इस प्रोग्राम को हम और आप सुनने के लिए बेताब रहते हैं और इसका इंतज़ार भी करते हैं। तो चलिए, इंतज़ार की घड़ियां अब ख़त्म होती हैं और शुरू होता है, आगाज़ होता है उस प्रोग्राम का जिसे हम और आप सुनना बेहद पसंद करते हैं। हमारी मुराद है गीत सुरीले गाता जा से। आइए आगाज़ करते हैं सुरीले नगमों का।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में सलामी फिल्म से लिया गया गीत आपने सुना। आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग, और नए रंग में सुरीले गीतों का प्रोग्राम जारी है। गीत सुरीले गाता जा। सामाइन, आज 7 अक्टूबर है और हर साल 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे, आलमी योम कपास मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद आलमी सतह पर कपास की मुआशी, सामाजिक और माहौलियाती अहमियत को उजागर करना और उसकी काश्त से मुंसलिक करोड़ों किसानों व मेहनतकशों के किरदार को तस्लीम करना है। वर्ल्ड कॉटन डे, आलमी योम कपास का आगाज 2019 वर्ल्ड कॉटन डे के तौर पर हुआ। 2019 को जेनेवा में आलमी तिजारती तंजीम WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जेर एहतमाम हुआ। ये पहल मगरबी अफ्रीका के 4 अहम कपास पैदा करने वाले ममालिक बैनन, बर्किनिया फासो और माली, जिन्हें कॉटन 4 कहा जाता है, ने की थी। अक्वामे मुतहदा की बाजाब्ता मंजूरी 2021 अक्वामे मुतहदा के जनरल असेंबली ने अगस्त 2021 में 7 अक्टूबर को रस्मी तौर पर आलमी योम कपास, वर्ल्ड कॉटन डे करार दिया।

चालबाज इस फिल्म का गीत आपने सुना, और इस गीत को गाया था मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति ने। आप सुन रहे हैं नैरंग प्रोग्राम, गीत सुरीले गाता जा का सिलसिला जारी है प्रोग्राम नैरंग में। सुनते रहिए आकाशवाणी हैदराबाद। दुनिया भर में आज वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जा रहा है, और इस दिन

मनाने की अहमियत के बारे में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। कपास दुनिया के 75 से जायद यानी 75 से जायद ममालिक में काश्त की जाती है और दुनिया भर में करोड़ों खानदानों की रोजी रोटी का अहम जरिया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बुनियाद, कपड़ा साजी की सनत के लिए सबसे अहम कुदरती और काबिल तजदीद खाम माल नेचुरल फाइबर फ्राहम करती है। पायदार और माहौल दोस्त काश्तकारी, इस दिन के जरिए कपास की ऐसी काश्त को फरोग दिया जाता है जिसमें पानी की बचत, कम कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल और मिट्टी की जरखेजी को बरकरार रखना शामिल हो। छोटे काश्तकारों की हिमायत, इस दिन को मनाने का अहम मकसद तरक्की पजीर ममालिक के छोटे किसानों को आलमी मंडियों तक बेहतर रसाई और मुनसिफाना कीमतें दिलाना है।

0: शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में गुलामी फिल्म से लिया गया गीत आपने सुना। आप सुन रहे हैं नायरंग प्रोग्राम, और नायरंग प्रोग्राम में सुरीले गीतों का सिलसिला जारी है। गीत सुरीले गाता जा में हम आपको बता रहे हैं वर्ल्ड कॉटन डे के बारे में। इस दिन की अहमियत के बारे में हमने आपको बताया। ये दिन हर साल 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। सुनते रहिए हमारा ये प्रोग्राम नायरंग, और सुनते रहिए आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 MHz।
1: FM Rainbow 101.9

गीत सुरीले गाता जा, ये सिलसिले के तहत अब हम आइए बात करते हैं मुख्तलिफ एहसासात के, और मुख्तलिफ एहसासों को सुनते हैं गीतों के ज़रिए।

दोस्तों, जब इंसान का महबूब या अजीज तरीन शख्स अचानक सामने आ जाए तो दिल की बेतरतीबी, खुशी और जज्बात का जो तूफान उमड़ता है, उसे उर्दू अदब में निशाते दीदार और जज्बे बेसाख्ता कहा गया है। इस दिलकश कैफियत और दिल के मचलने की तर्जुमानी शायरों ने कुछ यूं की है। उन्हें देखा तो खिल उठी रूह की कलियां, उन्हें देखा तो खिल उठी रूह की कलियां, वो सामने क्या आए रुखे हयात बदल गया। गालिब ने भी रूबरू आने पर दिल की इस रौनक को किस बला का बयां किया था। तेरे आने से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, तेरे आ जाने से जो आती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। और इसी बेताब दिली को अशआर की सूरत यूं भी नज्म किया जा सकता है। एक लख्त जो वो सामने आ जाए हमारे, थम जाए जमाना दिले नादा मचल जाए। एक उनकी झलक देख के खिल उठे हैं जज्बे, पहला बेयूं दिल जैसे कोई ख्वाब सच हो जाए।

0: आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नायरंग, और नायरंग में सुरीले गीतों का प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा जारी है। सुनते रहिए आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 MHz।
1: FM Rainbow 101.9

दोस्तों, प्यार मोहब्बत एक ऐसा एहसास है जहाँ हिसाबी किताब और पैमाने खत्म हो जाते हैं। जब दिल किसी पर मायल होता है, तो फिर कोई हद, कोई सरहद

और कोई हिसाब नहीं रहता। जज्बात का ऐसा तूफान आता है जो इंसान के पूरे वजूद को अपने घेरे में ले लेता है। उर्दू शायरी में मोहब्बत की इसी बेपनाह शिद्दत और बिला हिसाब जज्बे को बड़ी खूबसूरती से नज्म किया गया है। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसको देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। इश्क पर जोर नहीं, ये वो आतिश है गालिब के लगाए न लगे और बुझाए ना बुझे।

अनुराधा पौडवाल और पंकज उधास की आवाजों में दयावान फिल्म से लिया गया नगमा आपने सुना। दोस्तों, मोहब्बत में जब कोई इंसान आपकी सोच, रूह और सांसों में इस तरह रच बस जाए कि कायनात का हर मंजर, हर जगह और हर महफिल उसके वजूद का आयनादार बन जाए, तो तन्हाई में भी तन्हाई नहीं रहती। उर्दू मौसीकी और अदब में इस एहसास को इस मशहूर आलम गजल के जरिए यूं अमर किया गया है। तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। मोहब्बत का ये वो मुकाम जहां दुनिया का हर रंग, हर खुशबू और हर सिमत महबूब ही के नाम है। हर एक सिमत से आती है उनकी ही खुशबू, हर एक सिमत से आती है उनकी ही खुशबू। नजर उठाऊं तो हर शय में उनका अक्स मिले। हमें खबर ही न बदली का न बहारों का, जहां वो बैठ गए बस वहीं की महफिल है। जब दिल इस कैफियत से गुजरता है, तो इंसान भीड़ में हो या तन्हाई में, महबूब का तसव्वुर हर लम्हा उसके उसके साथ सायदा सायदार बनकर रहता है, और दुनिया की हर रौनक उसी के दम से महसूस होती है।

आप तो ऐसे न थे। इस फिल्म का गीत आपने सुना और इस गीत को गाया था मोहम्मद रफ़ी ने। आप सुन रहे हैं नैरंग प्रोग्राम, और नैरंग में सुरीले गीतों का सफ़र जारी है। गीत सुरीले गाता जा। दोस्तों, मोहब्बत जब अपने उरूज पर पहुंचती है तो सबसे पहले रातों का सुकून और आंखों की नींद कुर्बान होती है। ये वो मीठी बेचैनी है जिसमें नींद का उड़ जाना और दिल का किसी के ख्यालों में गुम हो जाना कोई दुख नहीं, बल्कि महबूब की याद से जुड़ा एक दिलकश और जानिब नज़र एहसास बन जाता है। उर्दू शायरी में नींद के उड़ जाने और दिल की इस बेखाबू हालत को बड़ी शायराना नफासत के साथ बयान किया गया है। मिर्ज़ा गालिब ने इस बेख्वाबी को यूं याद किया था। मौत का एक दिन मुय्यन है, मौत का एक दिन मुय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती है?

फिल्म दिल के इस गीत के साथ ही सामाइन गीत सुरीले गाता जा का यह सिलसिला यहीं पर अब रुकता है। हम उम्मीद करते हैं कि जो गीत सुनवाए गए आपने पसंद किए होंगे। सुनते रहिए हमारा ये प्रोग्राम जो कि नए रंग में पेश किया जाता है आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 MHz पर। प्रोग्राम नए रंग का इख्तिताम हो सामाइन, आइए उससे पहले सुनते हैं पयाम-ए-शब।

0: फसाने अपनी मोहब्बत के सच हैं, पर कुछ कुछ बढ़ा भी देते हैं हम जेबे दास्तां के लिए। जिंदगी के वाकयात और अपने तजुर्बात बयान करते वक्त हकीकत को खूबसूरत बनाने के लिए झूठ या गैर जरूरी मुबालिगे का सहारा नहीं लेना चाहिए। वक्ती तौर पर बात ज्यादा दिलचस्प बन सकती है, मगर सच्चाई और एतमाद मुतासिर हो सकता है। असल खूबसूरती इसमें है कि हकीकत को हकीकत ही रहने दिया जाए। दास्तान को खूबसूरत बनाने के लिए अल्फाज सजाए जा सकते हैं, मगर हकीकत में इजाफा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच की सादगी ही उसकी असल खूबसूरती है।
1: सच की सादगी ही उसकी असल खूबसूरती है। पयाम शब आपने समाप्त किया। तहरीर और पेशकश थी जनाब नदीम अख्तर जैदी की। इसके साथ ही सामाइन, उर्दू प्रोग्राम नए रंग अब अपने अख्तिताम को पहुंचता है।

0: ये आकाशवाणी हैदराबाद है। स्टूडियोज की घड़ी में 11 बजने ही वाले हैं। अब से चंद ही लम्हों में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। श्री मोदी ने सुबह नई दिल्ली के सरोजिनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
2: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य, हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
1: श्री मोदी ने कहा कि पहले आयात बढ़ाने के प्रयास किए जाते थे, जबकि आज भारत निर्यात के नए रिकॉर्ड बना रहा है। जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 वर्ष की जनसेवा पूरी करने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में अपने 25 वर्ष पूरे होने पर विश्व नेताओं से मिली शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन 7 से 10 अक्टूबर तक किया जाएगा। ये आयोजन सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। IMC 2026 का विषय सीमाओं के बिना विस्तार है। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाले इस बैठक में GST विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही रेपो दर बढ़कर 5.5% हो गया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी। सरकार ने कहा है कि देश में प्याज की उपलब्धता बेहतर हुई है और इसकी कीमतों में भी कमी आ रही है। उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार इस साल खरीफ प्याज की खेती बढ़ी है, फसल की स्थिति अच्छी है और मंडियों में प्याज की आवक भी बढ़ रही है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान से नई खरीफ प्याज की आवक शुरू हो गई है। आने वाले हफ्तों में इन राज्यों से आवक और बढ़ने की उम्मीद है। इससे त्योहारी मौसम में बाजार में प्याज की उपलब्धता बेहतर होगी। भारत ने पिछले 1-2 दिनों में काला सागर क्षेत्र में हुए वाणिज्यिक जहाजों पर सिलसिलेवार हमलों की निंदा की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस तरह के हमले वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन के लिए गंभीर खतरा है और नाविकों की जान जोखिम में डालते हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने लगातार लंबे समय से चल रहे युद्ध को समाप्त करने की वकालत की है और शांति को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों में रूस और यूक्रेन दोनों के साथ बातचीत की है। कनाडा के प्रधानमंत्री के वरिष्ठ राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के सलाहकार डेविड मॉरिसन का भारत दौरा आज समाप्त हो गया। डेविड मॉरिसन 3 दिन के भारत दौरे पर थे। वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के निमंत्रण पर भारत आए थे। विदेश मंत्रालय के अनुसार नई दिल्ली में हुई बैठक दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर पर चल रही द्विपक्षीय सुरक्षा वार्ता के अंतर्गत आयोजित की गई। एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में प्रमोद भगत और भाविना पटेल भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। ये खेल 18 से 24 अक्टूबर तक

0: And before we take on the main stories in detail, here is an important disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में दो दिन से जारी तेजी आज थम गई. सेंसेक्स 429 अंक यानी 0.6% गिरकर 72,639 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 173 अंक यानी करीब 0.8% नीचे आकर 22,603 पर पहुंच गया. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप सूचकांक में 0.6% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक आज 0.3% चढ़ गया.
0: Benchmark domestic equity indices snapped their two-day rising streak today. The Sensex fell 429 points, 0.6% to close at 72,639. Nifty dropped 173 points, or nearly 0.8%, to settle at 22,603. In the broader market at the National Stock Exchange, mid-cap 100 index lost over 0.6%, while the small-cap 100 index advanced 0.3%.
1: सेंसेक्स में 30 कंपनियों में से 26 के शेयरों में गिरावट रही. टाइटन करीब 3.5%, BEL 2.2% और एशियन पेंट्स 2.1% नीचे रहे. वहीं दूसरी ओर कोटक महिंद्रा बैंक 2.2%, भारती एयरटेल 1.3% से अधिक और ICICI बैंक 1.1% से ज्यादा चढ़े.
0: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 24 out of the 28 sectors edged downward. Among the top laggards, metals shed nearly 2.5%, consumer durables fell over 1.8%, and realty dropped more than 1.7%. In contrast, PSU banks gained 1.2%, housing finance as well as telecommunications jumped over 0.9%, and hospitals added more than 0.2%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 2,360 companies declined, 2,013 companies advanced, and 241 companies remained unchanged.
1: विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 36 पैसे गिरकर 96.78 पर बंद हुआ. पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है.
2: धन्यवाद.
1: पुनीत, मुख्य सवाल पर आते हैं. अगर हम सितंबर की बात करें तो लगभग 6% की गिरावट हमने देखी और अक्टूबर में भी वो सिलसिला हमें थमता हुआ नजर नहीं आ रहा, और सबसे ज्यादा हमने देखी गिरावट आईटी के सेक्टर्स में. ओवरऑल आपसे जानना चाहूंगा कि अभी क्या उम्मीद लगती है कि हम इससे उबर पाएंगे या अभी भी ये सिलसिला जारी रहेगा.
2: तो निखिल, जैसे आपने कहा कि

0: सितंबर का जो महीना था वो काफी निराशाजनक था स्टॉक मार्केट के लिए. हमने देखा 6% हेडलाइन इंडेक्सेस में गिरावट आई थी. कुछ हमने वहां पर रिबाउंड देखा था जो मुझे लगता है वो एक डेड कैट रिबाउंड था, और आज दोबारा से बाजारों में गिरावट रही. मुख्य कारण तो जो इंटरेस्ट रेट को लेकर चिंताएं हैं, जो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही है दुनिया में और हम देख रहे हैं कि उससे कमजोरी आ रही है अर्थव्यवस्था में, तो उसको लेकर आप देखें कि आज शेयर्स नीचे थे. आज भारत में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट भी थी, तो जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं जैसे रियल्टी और बैंकिंग, इस तरह क्षेत्र में आप देखेंगे, मेटल क्षेत्र में वहां पर गिरावट ज्यादा थी आज. और कुछ क्षेत्र सिलेक्टिवली हमने देखा वहां पर बाइंग थी. जैसा दिखाया आपने कि स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में उतनी गिरावट नहीं है, वहां पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बाइंग है, वहां पर फिर भी थोड़ा मजबूत ट्रेंड है, लेकिन लार्ज कैप्स जो है वहां पर गिरावट ज्यादा दिख रही है.
1: पुनीत, पीएसयू बैंक्स गेन बाय 1.2%. वी आर ऑल्सो इन द मिडस्ट ऑफ द सेकेंड quarterly earnings of companies. How do you see that reporting fundamentals of companies in terms of their profitability and revenue matching up to the sector valuation of companies?
0: So, Arjun, interestingly, if we look at the numbers behind the economy in terms of GDP growth, in terms of credit disbursals, we find that the economy is still doing very well. So my expectation is that when we see these second quarter numbers from companies, they would still be very good. And I'm not expecting any major decline in corporate earnings in the coming quarter. However, of course, these are concerns about inflation, about purchasing power of consumers, about certain segments of society where demand may be affected. So those concerns are pulling down the markets. But as far as numbers are concerned, my assessment is that the numbers that the companies will announce will still be very good, and largely based on the premise that we find the industrial production numbers to be quite robust, car sales numbers are good, and so broad economic numbers surprisingly are very good even now. It is just that the sentiment around these numbers is not that robust.
1: Puneet, my question is specific to banking. We know that the repo rate has been hiked by 25 basis points. It's 5.5% now. That was the announcement made by the Monetary Policy Committee at 10 in the morning today. How do you see banks being affected by this? Their net interest income in the previous quarter was quite high. Compliance has gone up, so NPAs have also come down substantially. How do you see banking as a sector responding to how the central bank has ruled in terms of the repo rate?
0: So whenever interest rates go up, they affect banks in many ways. In terms of net interest income, because usually banks, when they raise rates, the deposit rates don't go up that rapidly, but the lending rates go up very fast. So clearly, in the short term, the net interest income for banks tends to go up when interest rates are moving higher. And that is what we saw today. We saw banking stocks move up a little bit. But of course, banks' investment portfolio in terms of bonds, it gets affected because bond prices fall whenever interest rates rise. So I think we're going to have a mixed bag as well as banks are concerned. But overall, I think for banking, the good news is that the credit growth has gone up. So my guess is that while there are challenges about interest rates, but the headline numbers in terms of credit growth, in terms of net interest income, that will still remain quite positive for banking sector.
2: Puneet, हम ये देख रहे हैं consumer durables में भी हमें लगातार negative रुख देखने को मिला है, और दूसरी चीज यहाँ पर ये भी है कि जो domestic investors हैं उनका रुख इन सारी चीजों पर ज्यादा रहता है, लेकिन उनका रुख भी हमें बदलता हुआ नजर आ रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे?
0: लेकिन देखिए, अभी जो नंबर्स हैं कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स के, तो जो एफएमसीजी सेक्टर है वहां पर हमने डिमांड स्लो डाउन देखा है, लेकिन जो वाइट गुड्स हैं, जैसे आप ड्यूरेबल्स का नाम लेते हैं, उसमें गाड़ियां भी इन्वॉल्व हैं, अगर आप गाड़ियों के नंबर्स देखें, कार सेल्स जो है वो नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं सितंबर महीने के, तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा स्लो डाउन है कंजम्पशन में, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है. और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी आज इस बात का जिक्र किया है कि अभी वो इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रांग देख रहे हैं, लेकिन वो सेकेंडरी ऑर्डर इफेक्ट जो है, यानी डिमांड के ऊपर असर ना आए, उसके लिए वो कदम उठा रहे हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल कर रहे हैं. बट अभी फिलहाल अगर हम देखें तो कंजम्पशन पे उतना असर नहीं पड़ा है, थोड़ा स्लो डाउन है, पर बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है.

0: A direct impact on growth expectations. But if you look at the RBI statement, they said that they are looking at inflation going higher. They have increased the forecast for inflation, but they have actually increased the forecast for GDP growth also and to 7.1%. So clearly, RBI does not expect higher interest rates or higher inflation to impact consumption or economic growth, which is very positive. Having said that, I think RBI's main message today in the policy was that they have moved. They are not concerned about economic growth. They are now prioritizing managing inflation as a policy tool. So they are saying that okay, we are comfortable with the economic growth. We know that this is going to stay strong, but we want to focus right now on managing inflation and inflation expectations, and that is, I think, going to be the priority going forward. So the term they have used, calibrated tightening, I think that is the most significant message in RBI's policy today. Going forward, we'll definitely see slightly tight monetary policy, not very tight. They're not very aggressive about it, but they're going to keep the stance as slightly and moderately tightening so that inflation is first brought under control. And then I think they will shift the focus to economic growth.
1: भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को अधिक सुविधा देने और वित्तीय बाजारों में प्रतिभागियों के साथ जुड़ाव बढ़ाने के उद्देश्य से आज कई विकासात्मक और नियामकीय उपायों की घोषणा की है. बैंक ने अकाउंट एग्रीगेटर ढांचे के अंतर्गत एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर्स के बीच आपसी सहभागिता शुरू करने का निर्णय लिया है. इसके तहत ग्राहक अपनी पसंद के किसी भी एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर्स के माध्यम से अलग अलग वित्तीय सूचना प्रदाताओं के बीच अपनी वित्तीय जानकारी को देख सकेंगे और साझा कर सकेंगे. रिजर्व बैंक ने सेबी द्वारा विनियमित डिपॉजिटरीज को भी एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर्स के माध्यम से अपने एकीकृत खाता विवरण में बैंक जमा खातों की जानकारी शामिल करने की सुविधा दी है. इससे डीमैट खाता धारक अपने डीमैट निवेश होल्डिंग्स और बैंक जमा की जानकारी एक ही स्थान पर देख सकेंगे. पुनीत जी, आपसे यही जानना चाहूंगा कि हमारे श्रोताओं को आसान शब्दों में बताएं कि एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर्स के बीच ये जो आपसी सहभागिता शुरू करने का निर्णय लिया गया है, ये है क्या और इससे लोगों को क्या क्या फायदा होगा?
0: देखिए निखिल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात आपने बताई. अभी हम ये देखते हैं कि जब लोग एनबीएफसी से, क्योंकि नॉर्मली एनबीएफसी से जो उपभोक्ता कंज्यूमर जो लोन लेते हैं वो छोटे लोन होते हैं, करीब 5,000 से लेकर 50,000 तक के लोन्स होते हैं सामान खरीदने के लिए. और एक ही उपभोक्ता, एक ही कंज्यूमर कई सारी एनबीएफसी से, 3, 4, 5 एनबीएफसी से वो लोन्स लेते हैं
1: जी.
0: और एक तो लोन मैनेजमेंट कि कितना लोन है, कितना उसका रीपेमेंट्स है, वो इंफॉर्मेशन पूरी तरह से अवेलेबल नहीं होती. इस वजह से बैंक्स भी लोन देने में या एनबीएससी लोन देने में थोड़े हिचकिचाते हैं और साथ ही उनका इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा होता है. तो आरबीआई ने ये सुविधा दी है कि अब वो जो एनबीएससी हैं जो एक उपभोक्ता को लोन दे रही है वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकती है. उससे जो अच्छे उपभोक्ता है जो अपना रीपेमेंट टाइम पर करते हैं, कि क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, उनको बेटर रेट मिल सकेंगे, आराम से लोन भी मिल सकेंगे उनको और उनका हम ट्रैक भी बेटर कर सकेंगे. दूसरा, आपने बताया कि जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके पास अभी हम देखते हैं तो हम जितने हमारे शेयर अकाउंट होते हैं उनका इकट्ठा हमें एक अकाउंट मिलता है जिसे हम सीएएस कहते हैं, कॉम्पोजिट अकाउंट स्टेटमेंट कहलाती है. उसमें अब जो बैंक के जो एफडीज हैं उसकी इंफॉर्मेशन भी वो इंक्लूड करेंगे. तो एक ही जगह पे कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन सभी इन्वेस्टर्स को मिल पाएगी, अपने बैंक डिपॉजिट के लिए भी और अपने जो डिपॉजिटरी अकाउंट्स हैं जिनमें शेयर्स हैं या म्यूचुअल फंड की यूनिट्स हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पर मिल पाएगी. मुझे लगता है बहुत अच्छा कदम है और अगेन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए और बेहतर होगा सभी कंज्यूमर्स इन्वेस्टर्स के लिए.
2: In more news, IMF Managing Director Kristalina Georgieva has called on countries both rich and poor to take faster action to reduce debt and tackle growing inequality. Speaking in Singapore ahead of the IMF World Bank meetings in Bangkok next week, she said governments have the tools to address economic challenges but need to take necessary policy decisions without further delay.
3: Global public debt is near its highest levels since after the Second World War and is on track to soon exceed 100% of GDP. In other words, to cover our debt, we have to put everything we have produced in one year in that pile.
2: Georgieva said also highlighted risks from the rapid expansion of artificial intelligence, including heavy investment in data centers, rising energy demand, and potential financial shocks if AI-related earnings fall short of expectations. She said AI is becoming a major driver of countries' economic fortunes, but its benefits are not reaching all countries.

0: countries. Equally, Puneet, very briefly, even though the earlier story is about managing debt for the customer regarding NBFC aggregators, now you have the IMF director saying that nations rich and poor need to tackle growing inequality and reduce debt, take necessary policy decisions, use the tools that they have in hand, and more importantly, the impact of AI.
1: Absolutely. In fact, what we were saying about small consumers earlier applies equally to large nations also. And unfortunately, find that large nations have been raising a lot of debt lately. Look at USA, the aggregate debt is more than $40 trillion now, the largest in the world. So clearly, and it is going to become a problem because interest rates will go up, inflation, it contributes to inflation, it contributes to a fall in consumption. So IMF MD is basically warning countries against raising more debt because higher debt typically affects the poorer sections of the society because for them it becomes more difficult to sustain their living. And countries have less capital, less money to spend for welfare schemes. So IMF, I think, is giving the right warning to countries not to raise debt beyond a point, trying to manage their debt obligations, debt servicing, so that they can divert that money to welfare schemes. And I think it's appropriate for countries to do that.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना जरूर पूरा करेगा। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कभी नीतिगत निष्क्रियता की चर्चा से जुड़ा भारत अब अपनी बढ़ती ताकत और चुनौतियों से निपटने की क्षमता के लिए चर्चा में है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। श्री मोदी ने कहा कि पहले आयात बढ़ाने के प्रयास किए जाते थे, जबकि आज भारत निर्यात के नए रिकॉर्ड बना रहा है। उन्होंने कहा कि पहले भारत अपनी जरूरत के मोबाइल फोन आयात करता था, जबकि आज भारत में बने मोबाइल फोन वैश्विक बाजार में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कृषि को भी भारत में आए बदलाव का एक बड़ा उदाहरण बताया।
3: आजादी के बाद से लेकर अब तक खेती की विकास दर अगर किसी दशक में निरंतर सबसे अधिक रही, वो साल 2015 से 2025 तक का दशक, इसने खेती की ग्रोथ के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।
0: In Monio, the second India-European Free Trade Association Prosperity Summit was held in New Delhi today. President of Switzerland, Guy Parmelin, who is currently on a three-day visit to India, was present in the summit. India and the EFTA, comprising Switzerland, Iceland, Liechtenstein and Norway, mark 1 year since implementation of the Trade and Economic Partnership Agreement. Talking to reporters after attending the summit, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said that the European countries today consider India as a major hub for innovation and manufacturing.
4: एफ्टा के एग्रीमेंट से जिस तरह से करीब करीब अब तक 1,60,000 लोगों को रोजगार इसमें मिल चुका है, नई कंपनीज जो भारत आई है अपना प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग बेस डिजाइन बेस रिसर्च बेस भारत को बना रही है और आने वाले समय में इससे करीब करीब 1 मिलियन यानी 10 लाख के आसपास टोटल नया रोजगार पैदा होगा, युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज पैदा होगी और भारत के एमएसएमईज के साथ जिस तरह से स्विट्जरलैंड के नॉर्वे के लिक्टेनस्टीन के एमएसएमईज जुड़ रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी ग्रोथ की नई जर्नी बनेगा।
2: नया मर्चेंट डिस्काउंट ट्रेड एमडीआर फ्रेमवर्क 15 अक्टूबर से लागू होगा। इसके तहत ₹2,000 तक के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई भुगतान पर कोई एमडीआर नहीं लगेगा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने कहा कि ये एक टिकाऊ वाणिज्यिक ढांचा स्थापित करने से नए फिनटेक स्टार्टअप्स और प्रौद्योगिकी कंपनियों को डिजिटल भुगतान क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगा। एनपीसीआई ने कहा है कि जब भुगतान प्रसंस्करण शून्य एमडीआर व्यवस्था के तहत संचालित होता है तो केवल पर्याप्त पूंजी वाले बड़े तकनीकी समूह ही लंबे समय तक होने वाले परिचालन घाटे को वहन कर सकते हैं। एनपीसीआई के अनुसार एक पूर्वानुमानित वाणिज्यिक राजस्व मॉडल प्रतिस्पर्धा के लिए समान अवसर उपलब्ध कराएगा। इससे छोटे और नवोन्मेषी स्टार्टअप्स को प्रतिस्पर्धा करने, विशेष भुगतान सॉफ्टवेयर विकसित करने और वित्तीय सेवाओं की पहुंच का विस्तार करने में मदद मिलेगी। एनपीसीआई ने यह भी कहा कि बढ़ती बाजार प्रतिस्पर्धा से अंततः उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं, अधिक विश्वसनीय भुगतान ऐप्स और अधिक विकल्प मिलेंगे।
0: The 57th GST Council meeting will be held at Bharat Mandapam in New Delhi tomorrow. The meeting, to be chaired by Finance Minister Nirmala Sitharaman, will discuss policy reforms to resolve GST disputes and improve the flow of input tax credit.

0: with the aim of reducing the time and cost of compliance. Sources in the finance ministry said that the government will propose a five-pronged plan for the next set of reforms to the goods and services tax system.
1: एशियाई और यूरोपीय बाजारों में आज गिरावट का रुख देखने को मिला. एशियाई बाजारों की बात करें तो दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक करीब 2% गिर गया. जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.9% से अधिक की गिरावट के साथ बंद हुआ.
0: मूविंग ऑन टू द क्रूड ऑयल मार्केट, ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस रोज टुडे अमिड कंटिन्यूड सप्लाई रिस्क्स. Brent crude was trading 1.2% up at $101.78 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading over 0.7% higher at $90.11 per barrel at the time of writing this report.
1: पुनीत, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मध्य पूर्व में तनाव बढ़ रहा है और वैश्विक तेल सप्लाई पर भी उसका असर पड़ रहा है, क्या लगता है कि इसकी कीमतों में और किस तरह की स्थिति हम देख सकते हैं आगे चल करके?
2: लेकिन देखिए, हमें लग रहा है कि क्रूड के जो प्राइसेस है वो अब जो स्टेबल हो गए हैं, $100 जो ब्रेंट क्रूड का प्राइस है, $100 पर बैरल, ये उसके आसपास अब काफी स्टेबल चल रहा है. और मुझे लगता है यही एक ट्रेंड रहेगा, क्योंकि सप्लाईज फ्रॉम हॉर्मुज स्ट्रेट वो भी थोड़ी रिस्टोर हुई है, थोड़ी बढ़ी है. तो मुझे लगता है ये प्राइसेस अब यहीं पे स्टेबल होने चाहिए लॉन्ग टर्म में.
1: जी, आगे बढ़ते हैं. भारतीय सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज हुई. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के क्लोजिंग रेट के अनुसार 24 कैरेट सोना 0.5% गिरकर लगभग 1,47,767 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया था. वहीं चांदी की कीमत में 0.9% की गिरावट रही और ये 2,20,866 रुपए प्रति किलोग्राम पर था. पुनीत जी, गोल्ड और सिल्वर पर आपके कमेंट्स.
2: देखिए, जैसे जैसे अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है और उसका नेगेटिव असर सीधा गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में पड़ता है. तो डॉलर इंडेक्स करीब 102 हो गया है, तो वहां पर हम देख रहे हैं कि गोल्ड प्राइसेस नीचे हैं. और मुझे लगता है अभी गोल्ड में थोड़ी कमजोरी रहेगी, क्योंकि ये बस नहीं होने वाला ट्रेंड इंटरेस्ट रेट का या डॉलर इंडेक्स का, तो ये यही कमजोरी रहेगी.
1: जी पुनीत जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमसे चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत आभार. धन्यवाद.
2: धन्यवाद.
0: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices decline. Sensex falls over 400 points. Nifty settles at 22,603. RBI hikes repo rate by 25 basis points to 5.5%. Changes policy stance to calibrated tightening. And International Monetary Fund calls on countries to take faster action to reduce debt and tackle growing inequality. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत आपके लिए स्वागत करती हूँ मैं कुसुम। पहला गीत फिल्म कामचोर से, आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

फिल्म साहब बीवी और गुलाम का ये गीत आपने सुना गीता दत्त की आवाज में। अगला गीत फिल्म पोस्ट बॉक्स 999 का, आवाजें लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की।

0: फिल्म नीलाकाश का ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। इससे पहले आपने लव मैरिज फिल्म का गीत सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। इसी गीत के साथ ही गीत मेरे मन में यहीं तक, कुसुम को दीजिए इजाजत। लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में इस पर समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सरकार

0: प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। श्री मोदी ने नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
1: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य। हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
0: श्री मोदी ने कहा कि पहले आयात बढ़ाने के प्रयास किए जाते थे, जबकि भारत निर्यात के नए रिकॉर्ड बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मिली, शुभकामनाओं और स्नेहपूर्ण शब्दों के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अब तक जो प्रगति की है उसमें करोड़ों भारतीयों की भागीदारी का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रधानमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की शुभकामनाओं के लिए भी उनका आभार व्यक्त किया है। जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 वर्ष की जनसेवा पूरी करने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में अपने 25 वर्ष पूरे होने पर विश्व नेताओं से मिली शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन 7 से 10 अक्टूबर तक किया जा रहा है। ये आयोजन सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। IMC 2026 का विषय सीमाओं के बिना विस्तार है। महिला और बाल विकास विभाग का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आयोजित विभागीय सम्मेलनों की श्रृंखला का दूसरा सम्मेलन है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाना और महिला तथा बाल विकास से जुड़े कामों को और प्रभावी बनाना है। भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस आज मनाया जाएगा। इस वर्ष वायुसेना दिवस की थीम है अचूक, अभेद्य और सटीक। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी के माध्यम से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना देश की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता और दृढ़ संकल्प के साथ हमेशा तैयार है। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाले इस बैठक में GST विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही रेपो दर बढ़कर 5.5% हो गई है। मुंबई में द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी। वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केन्सो सुआव को देने की घोषणा की गई है। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने यह सम्मान उन्हें असममित कार्बनिक संश्लेषण में नॉन लीनियर प्रभावों और ऑटो कैटालिसिस की खोज के लिए देने का निर्णय किया है। ओलंपिक पदक विजेता स्वप्निल कुसाले और सरबजोत सिंह मिस्र के काहिरा में आज से शुरू होने वाले ISSF विश्व कप 2026 में 35 सदस्यीय भारतीय निशानेबाजी टीम की अगुवाई करेंगे। ये निशानेबाजी विश्व कप इस वर्ष का चौथा और अंतिम चरण है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, The news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi completed 20

दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आज अंजू आपके साथ और कार्यक्रम लेकर आई हूं निशिकंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तेरा नाम दिल पर लिख दिया है मैंने, तेरा नाम दिल पर लिख दिया है मैंने, अब तो हर घर धड़कन सिर्फ तेरे ही गीत गाती है। पत्थरों पर लिखा नाम तो आंधी और बारिश मिटा देते हैं, लेकिन मैंने तो यादों की स्याही से तेरा नाम अपने दिल के पन्नों पर भी लिख लिया है।

पता है, करीब होने के लिए पास होना जरूरी नहीं होता। लोग तो साथ रहकर भी अजनबी होते हैं, और तुम दूर होकर भी मेरी रग रग में बहते हो। क्योंकि जहां जिस जगह पर सुकून लिखा होता है ना, वहां सिर्फ सिर्फ तुम्हारा ही नाम होता है। तुम ही हो इस दिल के करीब इस कदर, तुम ही हो दिल के इस करीब इस कदर कि अब खुद में भी हम तुम्हें ही ढूंढते हैं।

न जाने क्यों लगता है कि क्यों मोहब्बत की मैंने तुमसे। इसमें दिन का चैन गायब, रात की नींद गायब, बस हर वक्त तेरा ही ख्याल। पर जब वो तुम्हारी प्यारी सी मुस्कुराहट याद आती है ना, तो ये दिल चुपके से कहता है कि चलो अच्छा ही हुआ कि अगर तुमसे मोहब्बत ना होती तो ये हसीन पागलपन मेरी जिंदगी में कैसे आता। कभी कभी लगता है कि क्यों की है मैंने मोहब्बत तुमसे, कभी कभी लगता है कि क्यों की है मैंने मोहब्बत तुमसे, जब तुम्हारी यादें मुझे रात भर जगाए रखती हैं। पर इस बेबसी में भी बहुत अजीब सा सुकून है कि जब धड़कने सिर्फ तुम्हारा नाम लेकर लहरें लेती रहती हैं।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

हमारे जिन दोस्तों ने अभी अभी ट्यून इन किया है उन्हें हम बता दें, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम निशिगंधा और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और आपके साथ मैं हूं अंजू।

0: क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? ये सवाल अक्सर दिल में आता है, पर जब तुम सामने आते हो तो हर शक हवा हो जाता है। छुपाना भी चाहो तो छुपा नहीं पाओगे इस चाहत को, क्योंकि तुम्हारी धड़कनों का शोर मेरे दिल तक बहुत साफ आता है।
1: यूं ही तुम

हम सिर्फ तेरे ही हैं, ये बात हमने जमाने को बता दी है। हम सिर्फ तेरे ही हैं, ये बात हमने जमाने को बता दी है। और तेरे नाम की लकीर हमने अपने हाथ पे सजा ली है। धड़कनें गवाही देती हैं हमारी इस बेइंतहा मोहब्बत की। जब से तुमने इस दिल की धड़कनें दिल को धड़कने की वजह दी है।

याद सताती है मुझे इस कदर रातों में कि नींद आंखों से और तुम इस दिल से कहीं दूर नहीं होते। हर लम्हा गुजरता है बस तेरी ही आस में कि काश तुम आ जाओ और कह दो कि तेरे बिना हम कुछ भी नहीं।

इस कार्यक्रम का सफर यहीं तक, और अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। अगले घंटे यानी 1:10 पर गीत सुहाने लेकर एक बार फिर से रहूंगे आपके साथ। कहीं जाएंगे मत, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। श्री मोदी ने नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
1: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य, हमें ऐसा भारत बनाना

0: लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर को गुजरात के वडनगर से शुरू हुई बाइक सेवा यात्रा कल काशी में संपन्न हो गई। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी में आयोजित समापन समारोह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश की जनता की ओर से उन्हें बधाई दी। जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 वर्ष की जनसेवा पूरी करने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में अपने 25 वर्ष पूरे होने पर विश्व नेताओं से मिली शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन 7 से 10 अक्टूबर तक किया जा रहा है। ये आयोजन सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। IMC 2026 का विषय सीमाओं के बिना विस्तार है। महिला और बाल विकास विभाग का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आयोजित विभागीय सम्मेलनों की श्रृंखला का दूसरा सम्मेलन है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाना और महिला तथा बाल विकास से जुड़े कामों को और प्रभावी बनाना है। भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस आज मनाया जाएगा। इस वर्ष वायुसेना दिवस की थीम है अचूक, अभेद्य और सटीक। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी के माध्यम से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना देश की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता और दृढ़ संकल्प के साथ हमेशा तैयार है। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में GST विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही रेपो दर बढ़कर 5.5% हो गई है। मुंबई में द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी। भारत ने रूस में सेना के साथ काम कर रहे 69 भारतीय नागरिकों के बारे में रूसी अधिकारियों से जानकारी मांगी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नियमित प्रेस वार्ता में बताया कि भारत लगातार रूस से रूसी सेना में शामिल सभी भारतीय नागरिकों को जल्द रिहा करने का अनुरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के प्रयासों से अब तक 139 भारतीय नागरिकों को रूसी सेना से रिहा कराया जा चुका है। ओलंपिक पदक विजेता स्वप्निल कुसाले और सरबजोत सिंह मिश्र के काहिरा में आज से शुरू होने वाले ISSF विश्व कप 2026 में 35 सदस्यीय भारतीय निशानेबाजी टीम की अगुवाई करेंगे। ये निशानेबाजी विश्व कप इस वर्ष का चौथा और अंतिम चरण है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कार्यक्रम गीत सुहाने का समय हुआ है 1:11 और 12 सेकंड। मैं अंजू एक बार फिर से करती हूँ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सुनेंगे आप बहुत ही मधुर गीत और शुरुआत बहुत ही बेहतरीन गीत के साथ।

जमाने भर की खुशियां भी फीकी लगती हैं मुझे, जमाने भर की खुशियां भी फीकी लगती हैं मुझे, जब तक मेरी आंखों के सामने तेरा दीदार ना हो। तेरे बिना ये दिल कहीं नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे मेरी हर धड़कन तेरे इंतजार

हम तेरी मोहब्बत के काबिल हैं ये तो खुदा जाने, हम तेरी मोहब्बत के काबिल हैं ये तो खुदा जाने या नहीं, पर इस दिल ने तेरे सिवा किसी और को पूजा नहीं।

ढल जाइए चांद और थम जाइए हसीन लम्हा वहीं, जब तू हौले से मुस्काए और अपना सिर मेरे कांधे पे टिकाए। तेरे संग मुझे रात में नदी के किनारे बैठना है, जहां लहरों के शोर में बस तेरी ही आवाज मुझे आए।

हर किसी को ये इश्क नहीं होता जमाने में, हर किसी को ये इश्क नहीं होता जमाने में। ये वो नायाब तोहफा है जिसका मिलना बस किसी किसी के नसीब में होता है।

तुम्हें हो या नहीं, हमने तो की है मोहब्बत तुमसे। तुम्हें हो या नहीं, हमने तो की है मोहब्बत तुमसे। अब इस दीवाने दिल को किसी और की चाहत कहाँ।

दोस्तों, कार्यक्रम आप समाप्ति की ओर है और अब होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 2:10 पर फिर से मिलूंगे आपसे कार्यक्रम रात सुरमई लेकर। कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस आईएमसी के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन इस माह 7 से 10 अक्टूबर तक किया जाएगा। ये आयोजन सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। आईएमसी 2026 का विषय सीमाओं के बिना विस्तार है। इस आयोजन में 100 से अधिक देशों के 1.5 लाख से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे, जिनमें 500 से अधिक भागीदार और प्रदर्शक, 600 स्टार्टअप और 900 विचारकों की भागीदारी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। श्री मोदी ने नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
1: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री

0: इंडिया बनाने का लक्ष्य, हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
1: जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 वर्ष की जनसेवा पूरी करने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में अपने 25 वर्ष पूरे होने पर विश्व नेताओं से मिली शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस आज मनाया जाएगा। इस वर्ष वायुसेना दिवस की थीम है अचूक, अभेद्य और सटीक। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी के माध्यम से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना देश की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता और दृढ़ संकल्प के साथ हमेशा तैयार है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जीएसटी विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। महिला और बाल विकास विभाग का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आयोजित विभागीय सम्मेलनों की श्रृंखला का दूसरा सम्मेलन है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाना और महिला तथा बाल विकास से जुड़े कामों को और प्रभावी बनाना है। दिल्ली में दृष्टि परियोजना के अंतर्गत आधुनिक सर्वे और मैपिंग सिस्टम बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए 65 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके तहत दिल्ली के सभी 13 जिलों में पीएम उदय सेल बनाए जाएंगे। परियोजना के लिए 52 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और 13 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार देगी। इस परियोजना से संपत्तियों का सर्वे, नक्शा तैयार करने और दस्तावेजों का काम तेजी से होगा। इससे लोगों को संपत्ति का मालिकाना हक लेने और संपत्ति के हस्तांतरण में भी आसानी होगी। ISSF निशानेबाजी विश्व कप आज से मिस्र के काहिरा में शुरू होगी। 35 सदस्यीय भारतीय टीम का नेतृत्व ओलंपिक पदक विजेता स्वप्निल कुसाले और सर्वजोत सिंह करेंगे। ये निशानेबाजी विश्व कप इस वर्ष का चौथा और अंतिम चरण है। एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में प्रमोद भगत और भाविना पटेल भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। ये खेल 18 से 24 अक्टूबर तक जापान के आईची नागोया में आयोजित होंगे। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद ने 2014 से 2023 के बीच एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण और 4 कांस्य सहित 6 पदक जीते हैं। पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना ने 2018 और 2023 एशियाई पैरा खेलों में 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम। PM Modi completed 25 years of continuous public service as head of the government. Mr. Modi visited Sri Vinayaka Temple at Sarojini Nagar in New Delhi and offered prayers there. On the occasion, the PM addressed the Viksit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi. He said that India will definitely fulfill its dream of becoming a developed nation by 2047 through visionary policies and hard work. Addressing the Viksit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi, Mr. Modi said that present government's policy focuses on solutions for all citizens.
0: Sabka saath, sabka vikas, yahi mere liye sushasan ka aadhar raha hai. Samasya sabki hai, to samadhan bhi sabke liye hona chahiye. Aur isliye humne sushasan ko saturation se joda. सेचुरेशन यानी हर लाभार्थी जुड़े, कोई पात्र छूटे नहीं, कोई हकदार पीछे रहे नहीं और किसी के हक पर कोई डाका न डाल सके।
2: The Prime Minister said India, once associated with discussions on policy paralysis, is now increasingly being discussed for its growing strength and resilience. He emphasized that over the past 12 years, the situation has changed completely. Mr. Modi said that earlier efforts were made to increase imports while India is setting new export records. He highlighted that the decade from 2015

समय हुआ है 2:11 और 3 सेकंड। ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का। एक बार फिर से अंजू आपके साथ और होंगे बहुत ही मधुर गीत। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

आंखें थक जाएंगी, मगर तेरा इंतजार कम नहीं होगा। आंखें थक जाएंगी मगर तेरा इंतजार कम नहीं होगा, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी की हर शाम तेरे नाम कर दी है। दूर जाकर भूल मत जाना मेरी इन वफाओं को तुम, दूर जाकर भूल मत जाना मेरी इन वफाओं को तुम, हमने अपनी पूरी हस्ती तेरे नाम कर दी है।

इस दिल में जगह है सिर्फ तुम्हारी, ये बात तुम जान लो। इस दिल में जगह है सिर्फ तुम्हारी, ये बात तुम जान लो। मेरी हर धड़कन गवाही देगी, ये बात भी तुम मान लो।

लफ्ज की जरूरत ही कहां हमारी इस मोहब्बत में, लफ्ज की जरूरत ही कहां हमारी इस मोहब्बत में, जब बिना कुछ कहे भी तेरा मेरे करीब रहना अच्छा लगता है, और हम चुप हैं क्योंकि तुम्हारी आंखों को पढ़ना अच्छा लगता है, हम चुप हैं क्योंकि तुम्हारी आंखों को पढ़ना अच्छा लगता है, इस खामोशी में भी सिर्फ तुम्हारा नाम ही मुझे अच्छा लगता है।

दोस्तों, ये कार्यक्रम का आखिरी गीत है। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और कुछ ही समय में रहेंगे आपके साथ पंकज, कार्यक्रम हमराही लेकर। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस आईएमसी के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन इस माह 7 से 10 अक्टूबर तक किया जा रहा है। ये आयोजन सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। आईएमसी 2026 का विषय सीमाओं के बिना विस्तार है। इस आयोजन में 100 से अधिक देशों के 1.5 लाख से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे, जिनमें 500 से अधिक भागीदार और प्रदर्शक, 600 स्टार्टअप तथा 900 विचारकों की भागीदारी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। श्री मोदी ने नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
1: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य। हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
0: जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 वर्ष की जनसेवा पूरी करने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में अपने 25 वर्ष पूरे होने

0: पर विश्व नेताओं से मिली शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल आइवरी कोस्ट गणराज्य की विदेश राज्य मंत्री नियाले काबा से मुलाकात की। अबिजान में हुई बैठक में दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। इस दौरान व्यापार, निवेश, बुनियादी ढांचे, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर तीन देशों की अफ्रीका यात्रा पर हैं। महिला और बाल विकास विभाग का दो दिवसीय शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। यह सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आयोजित विभागीय सम्मेलनों की श्रृंखला का दूसरा सम्मेलन है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाना और महिला तथा बाल विकास से जुड़े कामों को और प्रभावी बनाना है। भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस आज मनाया जाएगा। इस वर्ष वायुसेना दिवस की थीम है अचूक, अभेद्य और सटीक। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी के माध्यम से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि इस वर्ष अभ्यास वायु शक्ति, विभिन्न द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, ड्रोनाथॉन और बहुपक्षीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों के माध्यम से वायुसेना अपने युद्ध तैयारी को लगातार परख रही है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जीएसटी विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। ओलंपिक पदक विजेता स्वप्निल कुसाले और सरबजोत सिंह मिश्र के काहिरा में आज से शुरू होने वाले आईएसएसएफ विश्व कप 2026 में 35 सदस्यीय भारतीय निशानेबाजी टीम की अगुवाई करेंगे। ये निशानेबाजी विश्व कप इस वर्ष का चौथा और अंतिम चरण है। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान लगाया है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पंजाब में अगले 2-3 दिनों तक आंधी तूफान के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. PM Modi completed 25 years of continuous public service as head of the government. Mr. Modi visited Sri Vinayaka Temple at Sarojini Nagar in New Delhi and offered prayers there. On the occasion, the PM addressed the Viksit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi. He said that India will definitely fulfill its dream of becoming a developed nation by 2047 through visionary policies and hard work. Addressing the Viksit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi, Mr. Modi said that present government's policy focuses on solutions for all citizens.
2: Sabka saath, sabka vikas, yahi mere liye sushasan ka aadhar raha hai. Samasya sabki hai. तो समाधान भी सबके लिए होना चाहिए और इसलिए हमने सुशासन को सैचुरेशन से जोड़ा। सैचुरेशन यानी हर लाभार्थी जुड़े, कोई पात्र छूटे नहीं, कोई हकदार पीछे रहे नहीं और किसी के हक पर कोई डाका न डाल सके।
1: Once associated with discussions on policy paralysis, is now increasingly being discussed for its growing strength and resilience. He emphasized that over the past 12 years, the situation has changed completely. Mr. Modi said that early efforts were made to increase imports, while India is setting new export records. He highlighted that the decade from 2015 to 2025 witnessed the highest sustained agricultural growth since independence, surpassing all previous records. India has condemned the string of attacks that have taken place in the Black Sea region in 2 days. Briefing media New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Ranadhir Jaiswal said that such attacks threaten commercial shipping and endangers the lives of seafaring communities. He added that a commercial vessel, MV Royad Mamadov, came under attack while it was plying in the Black Sea. There were 3 Indian nationals on board and all of them are safe, but one of them got injured and is receiving medical treatment. The second ship, a Togo flag

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर इस समय समय हुआ है रात्रि के 3:10 और यानी अभी इस टाइम हो चुका है पूरे रात के 3:11। मैं पंकज हूं आपके साथ और अब आप सुनेंगे कार्यक्रम हमराही और मैं आपसे मिलता हूं इन दो गानों के बाद। तो अभी शुरुआत करते हैं आपकी कसम मूवी से और हाँ, इस घंटे आप गाने सुनेंगे वो भी डुएट्स, तो इन गानों का मजा लीजिए। दो गानों के बाद मैं आपसे मिलता हूँ।

के नाम सागर किशोरदा और लता जी की आवाज, जावेद अख्तर के लिरिक्स और आरडी बर्मन का म्यूजिक। पिछले घंटे आप सुन रहे थे रात सुरमई शो, और तो रात सुरमई शो के बाद इस सफर को आगे बढ़ाते हैं मैं और आप। इस आधी रात का जमकर मजा उठाएंगे इन पुराने ड्यूट्स गानों के साथ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, शो का नाम है हमराही। मैं हूं पंकज आपके साथ और सुबह के 6 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा। तो ऊंगती नींद में जागने का लुत्फ लीजिए, अपनी हर परेशानी को भूल जाइए, और इन दो गानों के बाद आपसे मैं मिलता हूं।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि

एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

इस गाने के लिरिक्स को अगर बहुत ही ध्यान से सुना जाए तो सच में ऐसा लगता है कि ये प्यार की गहराइयों में डूबे हुए एक एक शब्द हैं। और सच में मैं अगर अपना पर्सनल बताऊं, मुझे तो बहुत इमोशनल फील आती है, पता नहीं क्यों, बट इसके लिरिक्स बहुत अच्छे हैं और ध्वनि धुन जो है इसकी वो तो बहुत अच्छी है। ऊपर से आज़ाद आई और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ अगर हो तो फिर तो कहने क्या है। ये गाना था फ्रॉम द मूवी बुलंदी। और अपने हमराही के साथ पता है जिंदगी भर मिलना और खुशी के साथ जीने वाली जो लाइफ होती है ना, उसको ही अच्छा जीवन कहना चाहिए, क्योंकि भीड़ नहीं और मतलब करोड़ों में से एक अच्छा पार्ट

ही जो है वो करोड़ों सुख झोली में डाल देता है। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर मैं हूं पंकज आपके साथ। शो का नाम है हमराही, इसलिए जीवन साथी ना बहुत अच्छे स्वभाव और विचार का होना चाहिए, तभी हर रात चांदनी सी खिल उठेगी।

और फाइनली प्यार का इजहार कर दिया इस गाने के अंदर. ये फिल्म बहुत अच्छी है. शबाना आजमी और नवीन निश्चल जो है इसमें लीड कपल हैं और बहुत मजा आएगा आपको. कभी मौका मिले तो ये जरूर देखिएगा. ऑनलाइन अवेलेबल है. एक बार कहो फिल्म से ये गाना बप्पी लहरी और सुलक्षणा पंडित की आवाज में था और बप्पी दा का म्यूजिक था और देव कोहली के इसने इस गाने को लिखा था. और पता है जब ये गाना चला था तो मैं एक बात सोच रहा था, इसमें इस गाने में ही बोल रहे होते हैं कि भाई एक बार कहो कि मुझसे प्यार है. और यही तो दिक्कत है कि लोग है ना प्यार करेंगे लेकिन इजहार नहीं करेंगे. दिल की गिरह खोलने में इतना टाइम क्यों लगाना भाई, इतना नेगेटिव क्यों सोचना कि क्या पता सामने वाला मना कर दे. अरे ठीक है, जो होगा सो होगा. अब ये भी तो हो सकता है ना कि आप इजहार करें और सामने वाला मान जाए, हाँ बोल दे. ये तो रिस्क लेना ही चाहिए. आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर मैं हूँ पंकज आपके साथ और शो का नाम है हमराही. कल को ना दिल की बात ना कहने का मलाल ना रहे इसलिए मोहब्बत

लता जी और किशोर कुमार की आवाज में राही बदल गए मूवी से ये वाला गाना था। आरडी बर्मन का संगीत और गुलशन बावरा के बोल। आजकल प्यारे रिश्तों के ना मायने बदल गए हैं, लेकिन काम तो रिश्ते ही आते हैं, स्पेशली जीवन साथी। अब अगले घंटे अगले शो अरुणिमा में मैं पंकज आपसे मिलूंगा सिर्फ

आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर. हमारा ही शो का टाइम जो है ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है, तो अभी इस शो का ये वाला गाना सुनिए और फिर सुबह 4 बजे हिंदी अंग्रेजी में समाचार और उसके बाद 4:10 पर मैं पंकज आपसे फिर से मिलता हूँ. अभी के लिए ये वाला गाना फ्रॉम द मूवी जावाज.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस आईएमसी के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन इस माह 7 से 10 अक्टूबर तक किया जा रहा है। ये आयोजन सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। आईएमसी 2026 का विषय सीमाओं के बिना विस्तार है। इस आयोजन में 100 से अधिक देशों के 1.5 लाख से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे, जिनमें 500 से अधिक भागीदार तथा प्रदर्शक, 600 स्टार्टअप और 900 विचारकों की भागीदारी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। श्री मोदी ने नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
1: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य। हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
0: जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 वर्ष की जनसेवा पूरी करने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में अपने 25 वर्ष पूरे होने पर विश्व नेताओं से मिली शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। महिला और बाल विकास विभाग का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आयोजित विभागीय सम्मेलनों की श्रृंखला का दूसरा सम्मेलन है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाना और महिला तथा बाल विकास से जुड़े कामों को और प्रभावी बनाना है। भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस आज मनाया जाएगा। इस वर्ष वायु

0: सेना दिवस की थीम है अचूक, अभेद्य और सटीक। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी के माध्यम से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि इस वर्ष अभ्यास वायु शक्ति, विभिन्न द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, ड्रोनाथॉन और बहुपक्षीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों के माध्यम से वायुसेना अपनी युद्ध तैयारी को लगातार परख रही है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जीएसटी विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। दिल्ली कस्टम्स ने कल करीब 515 करोड़ रुपए की कीमत के 165 किलोग्राम जब्त मादक पदार्थों को नष्ट कर दिया। दिल्ली कस्टम्स की उच्च स्तरीय मादक पदार्थ निपटान समिति ने निर्धारित कानूनी प्रक्रिया और सुरक्षा उपायों के तहत इन मादक पदार्थों को नष्ट किया। ये कार्रवाई इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत की गई है। आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप आज से मिस्र के काहिरा में शुरू होगी। 35 सदस्यीय भारतीय टीम का नेतृत्व ओलंपिक पदक विजेता स्वप्निल कुसाले और सरबजोत सिंह करेंगे। ये निशानेबाजी विश्व कप इस वर्ष का चौथा और अंतिम चरण है। एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में प्रमोद भगत और भाविना पटेल भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। ये खेल 18 से 24 अक्टूबर तक जापान के आईची नागोया में आयोजित होंगे। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद ने 2014 से 2023 के बीच एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण और 4 कांस्य सहित 6 पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi completed 25 years of continuous public service as head of the government. Mr. Modi visited Sri Vinayaka Temple at Sarojini Nagar in New Delhi and offered prayers there. On the occasion, the PM addressed the Viksit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi. He said that India will definitely fulfill its dream of becoming a developed nation by 2047 through visionary policies and hard work. Addressing the Viksit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi, Mr. Modi stated that present government's policies focus on solutions for all citizens.
2: Sabka saath, sabka vikas, yahi mere liye sushasan ka aadhar raha hai. Samasya sabki hai. तो समाधान भी सबके लिए होना चाहिए और इसलिए हमने सुशासन को सैचुरेशन से जोड़ा। सैचुरेशन यानी हर लाभार्थी जुड़े, कोई पात्र छूटे नहीं, कोई हकदार पीछे रहे नहीं और किसी के हक पर कोई डाका न डाल सके।
1: The Prime Minister said India, once associated with discussions on policy paralysis, is now increasingly being discussed for its growing strength and resilience. He emphasized that over the past 12 years, the situation has changed completely. Mr. Modi said that earlier efforts were made to increase imports while India is setting new export records. He highlighted that the decade from 2015 to 2025 witnessed the highest sustained agricultural growth since independence, surpassing all previous records. India has condemned the string of attacks that have taken place in the Black Sea region in 2 days. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Ranadhir Jaiswal said that such attacks threaten commercial shipping and endanger the lives of seafaring communities. He added that a commercial vessel, MV Royad Muhammadov, came under attack while it was plying in the Black Sea. There were 3 Indian nationals on board and all of them are safe, but one of them got injured and is receiving medical treatment. The second ship, a Togo-flagged ship, Alpha Vatan, also came under attack on 6th October. Expanding on India's broader diplomatic efforts to address the root cause of regional volatility, Mr. Jaiswal emphasized New Delhi's ongoing communication channels with both Moscow and Kiev. Meanwhile, Russia has expressed great gratitude to India for its readiness to contribute to resolving the Ukraine conflict. Kremlin spokesman Dmitry

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। सुबह के 4:10 हुए हैं और अब आप सुनेंगे कार्यक्रम अरुणिमा। मैं पंकज रहूंगा इस शो में आपके साथ। तो शुरुआत करते हैं दो गानों से और दो गानों के बाद में आपसे मिलता हूं। अभी के लिए सुजाता मूवी का ये गाना।

किशोर कुमार की आवाज में याराना फिल्म का ये वाला गाना था, अनजान के लिरिक्स और राजेश रोशन का संगीत। मन से निकली आवाज भी ना हमें जीवन के अच्छे पथ पर चलने का इशारा करती है कि सदा दूसरों का अच्छा करो और कभी निराशा में हार मत मानो, उठो और आगे बढ़ो। अरुणिमा शो में मैं पंकज हूँ आपके साथ, सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। आज गुरुवार है और मन एक गुरु की भांति रोशनी का दिया जलाकर हमें राह दिखाता है कि बस अच्छे कर्मों के पथ पर चलते हुए खुशियों से ये जीवन बिता दें, और यही सफल जीवन जिंदगी बनता है।

गीता दत्त की आवाज अनुभव फिल्म का गाना 1972 में ये मूवी रिलीज हुई थी। गुलजार के बोल और कनु रॉय का संगीत। ये ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में भी जो है ना जादू से भरी है और इस टाइम तो ये गाने और भी ज्यादा अच्छे लगते हैं। और मुझे एक बात कहनी है, इसके लिए मुझे आप माफ करिएगा, लेकिन हम लोग पता है जिंदगी में मिलने वाली हर छोटी खुशी के लिए बड़े नाशुक्र हैं। अगर हमारा स्वास्थ्य और हाथ पांव और पूरा शरीर अगर हमारा स्वस्थ है तो सबसे बड़ा आशीर्वाद तो यही है और उपहार भी से कह सकते हैं कि भाई हर

को तो मतलब एक अच्छा स्वास्थ्य, मतलब कंप्लीट एक हेल्दी लाइफ जो है वो जीना ही अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर मैं हूं पंकज आपके साथ, शो का नाम है अरुणिमा। और मेरी बात की अगर परख करनी हो ना तो हॉस्पिटल जाकर मरीजों को देखें, फिर आप समझेंगे कि हर हाल में शुक्रिया कहना चाहिए और जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है।

ये गाने जो हैं ये जेंजीज को भी पसंद आते हैं क्योंकि इन गानों में सच्चाई और सरलता है, क्योंकि ये संगीत है सरदर्द नहीं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर मैं हूं पंकज आपके साथ, शो का नाम है अरुणिमा। और ऑफ कोर्स आगे फ्यूचर की प्लानिंग हमें करनी ही चाहिए, लेकिन भविष्य की चिंता में ही ना हम खुद को हलकान करने में जो है ज़्यादा परेशान ना हो, और क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान होना और बहुत ज़्यादा कल की फिक्र करना उससे ना हाथ कुछ नहीं आता, उल्टा अपनी ही हेल्थ जो है वो ख़राब होती है। अब कल क्या होगा इस पर किसी का जोर तो है नहीं, कहीं कल की फिक्र में आज का सुकून भी ना चला जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आज का दिन आप कैसे बिता रहे हैं, खुशी से या टेंशन से?

0: मैं जाऊं।
1: ठहरो मीना, मैं खाना लेके आता हूँ, दोनों इकट्ठे खाएंगे। हाँ
0: ओके।
2: चिराग सीट, मेरी माँ सख्त बीमार है, डॉक्टर के पास ले जाना है। गाड़ी ले जा सकता हूँ?
1: हाँ ले जाओ ले जाओ।

0: तेरे का इशारा समझू, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े वो हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ो
0: नहीं।
1: छोड़ो ना।
0: आज की रात तो दिल तोड़ो ना।

गाने इतने अच्छे हैं कि इन गानों के साथ साथ अगर आप गुनगुनाते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे गाना सीख ही जाते हैं, मतलब सुर के साथ सुर ऑटोमेटिकली मैच हो जाता है। कहते हैं कि सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं, तो आज का दिन आप किस उत्साह से मनाएंगे, आज के दिन के लिए ये सोचिए। और खुद को ना हमेशा बहुत शानदार ट्रीट करना चाहिए। हम अपने आप को ही बहुत हल्के में लेते हैं, अपने आप के लिए कभी गिफ्ट्स लेने चाहिए और खुद को तो बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए। मतलब ओवरऑल अच्छे से ही हम अपने आप को ट्रीट करें। तो अगले घंटे यानी अगला शो होगा भोर सुहानी सुबह 5 बजे से। आप हिंदी और इंग्लिश न्यूज़ सुनेंगे पहले, और इसके बाद जो है फिर मैं सुबह 5:10 पर मैं पंकज आपसे फिर से मिलूंगा। अभी अरुणिमा शो के ये बचे बाकी के गानों में खो जाइए और इसी तरह सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे अगले घंटे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस आईएमसी के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन इस माह की 7 से 10 तारीख तक किया जा रहा है। यह आयोजन सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। इस सम्मेलन का विषय सीमाओं के बिना विस्तार है। इस आयोजन में 100 से अधिक देशों के 1.5 लाख से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे, जिनमें 500 से अधिक भागीदार तथा प्रदर्शक, 600 स्टार्टअप और 900 विचारकों की भागीदारी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। श्री मोदी ने नई दिल्ली के सरोजिनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
1: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य, हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
0: जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 वर्ष की जनसेवा पूरी करने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए सभी का आभार व्यक्त किया है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जीएसटी विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। महिला और बाल विकास विभाग का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आयोजित विभागीय सम्मेलनों की श्रृंखला का दूसरा सम्मेलन है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाना और महिला तथा बाल विकास से जुड़े कामों को और प्रभावी बनाना है। वायुसेना का 94वां स्थापना दिवस आज मनाया जाएगा। इस वर्ष वायुसेना दिवस की थीम है अचूक, अभेद्य और सटीक। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी के माध्यम से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि इस

0: वर्ष अभ्यास वायु शक्ति, विभिन्न द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, ड्रोनोथॉन और बहुपक्षीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों के माध्यम से वायुसेना अपनी युद्ध तैयारी को लगातार परख रही है। दिल्ली कस्टम्स ने कल करीब 515 करोड़ रुपए की कीमत के 165 किलो जब्त मादक पदार्थों को नष्ट किया। दिल्ली कस्टम्स की उच्च स्तरीय मादक पदार्थ निपटान समिति ने निर्धारित कानूनी प्रक्रिया और सुरक्षा उपायों के अंतर्गत इन मादक पदार्थों को नष्ट किया। ये कार्रवाई इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत की गई है। ओलंपिक पदक विजेता स्वप्निल कुसाले और सरबजोत सिंह मिस्र के काहिरा में आज से शुरू होने वाले आईएसएसएफ विश्व कप 2026 में 35 सदस्यीय भारतीय निशानेबाजी टीम की अगुवाई करेंगे। ये निशानेबाजी विश्व कप इस वर्ष का चौथा और अंतिम चरण है। इसके अलावा एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में प्रमोद भगत और भाविना पटेल भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। ये खेल 18 से 24 अक्टूबर तक जापान के आईजी नागोया में आयोजित होंगे। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इधर हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और आसपास के इलाकों में आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate 10th edition of India Mobile Congress at Yashobhoomi in New Delhi today. The 4 days event, which began yesterday, is being jointly organized by the Department of Telecommunications and the Cellular Operators Association of India. It will showcase India's remarkable progress in telecommunications, digital connectivity and technological innovation while providing a global platform for collaboration, investment and knowledge exchange. The theme of IMC 2026 is Scale Without Boundaries, reflecting India's growing capabilities in digital innovation, next-generation connectivity and technology-led growth. PM Modi completed 25 years of continuous public service as head of the government. On the occasion, the PM addressed the Viksit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi. He said that India will definitely fulfill its dream of becoming a developed nation by 2047 through visionary policies and hard work. Addressing the Viksit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi, Mr. Modi said that present government's policy focuses on solutions for all citizens.
2: Sabka saath, sabka vikas. यही मेरे लिए सुशासन का आधार रहा है। समस्या सबकी है तो समाधान भी सबके लिए होना चाहिए, और इसलिए हमने सुशासन को सैचुरेशन से जोड़ा। सैचुरेशन यानी हर लाभार्थी जुड़े, कोई पात्र छूटे नहीं, कोई हकदार पीछे रहे नहीं, और किसी के हक पर कोई डाका न डाल सके।
1: The 57th GST Council meeting will be held at Bharat Mandapam in New Delhi today. The GST Council meeting, to be chaired by Finance Minister Nirmala Sitharaman, will discuss policy reforms to resolve GST disputes and improve the flow of input tax credit with the aim of reducing the time and cost of compliance. Sources in the Finance Ministry said that the government will propose a five-pronged plan for the next set of reforms to the goods and services tax system. These reforms are aimed at automating and easing a lot of the current administrative bottlenecks in the GST system and reducing the compliance burden, especially for small businesses. The 94th Indian Air Force Day will be celebrated today. The theme for this year's celebration is Indian Air Force, infallible, impervious and precise. In his message through Akashvani on the eve of the Air Force Day, Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal Amarpreet Singh has said that the Indian Air Force is always ready to protect the nation with alertness and firm commitment. He said, last year, Operation Sindoor reaffirmed the pivotal power of integrated air operations, demonstrating its capability and capacity to defend country's sovereignty. India has joined the United States and 13 other economies in signing a joint ministerial statement calling for measures to address

सुबह के 5:10 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और अब शुरू होता है कार्यक्रम भोर सुहानी मेरे यानी पंकज के साथ। तो शुरुआत करते हैं इस गाने से, मोहम्मद अजीज और सान सरगम की आवाज फ्रॉम द मूवी त्रिदेव।

अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और उस टाइम में ये गाना सुन रहे हैं तो सच में बहुत अच्छी फीलिंग आती है, गाड़ी के शीशे नीचे करके अंदर ठंडी आती हुई हवा और ऊपर से ये वाला गाना, सच में बहुत अच्छी फीलिंग होती है। दीवाना फिल्म से कुमार सानू की आवाज, समीर के बोल और नदीम श्रवण का संगीत है। मैं हूं पंकज, आपके साथ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। शो का नाम भोर सुहानी है और आज 8 अक्टूबर गुरुवार का दिन है। हम त्योहारों के दिनों में चल रहे हैं और ऊपर से सर्दियां आएंगी, साथ ही दिवाली आएगी, लेकिन इससे पहले और भी बहुत सारे त्योहार आएंगे, यानी पूरा फेस्टिवल मूड है हम दिल्ली वालों का। तो आज का दिन आपका सुंदर और शुभ बने, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। और अभी के लिए दो गाने और उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। सुबह हो चुकी है, सुबह वाला गाना फ्रॉम द मूवी साज़।